ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 31, तदनुसार 21 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है, आइए सुने कृषि चर्चा। विषय है उर्वरक की शुद्धता की जांच कैसे करें, वाचन स्वर है सविता कुमारी का।
1: आज कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, फसल मनोनुकूल उत्पादन लेवाक लेल हम सब खाद व उर्वरक व्यवहार करैत छी। मुदा उर्वरक व्यवहार कयलाक पश्चात ई बुझबा मे अबैत अछि जे उर्वरक शुद्ध नहि छल, ओ हानिकारक तत्व सब सँ मिलाओल गेल रहैत अछि।
0: ये आकाशवाणी दरभंगा है, आइए सुनते हैं चिंतन। चिंतन के बाद आप सुनेंगे कृषि चर्चा।
2: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सौंदर्य बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य मनोज्ञ रहता है, प्राण ही अंगों का रस है। रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चारों ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है। वेदों में सौंदर्य को स्वास्थ्य कहा गया है। सौंदर्य देखकर सभी की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। यह एक जादू है, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती है वो उधर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ये सार्वभौम है। पाप और सौंदर्य दोनों का आपसी मेल नहीं होता। सुंदर आकृति

0: से असुंदर कार्य उत्पन्न नहीं होते। तन का सौंदर्य तो देश और काल की सीमा में ही सीमित है, लेकिन जो सद्गुण है उनका सौंदर्य चारों ओर फैलता है।
1: यह था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी दरभंगा है, आइए सुने कृषि चर्चा। विषय है उर्वरक की शुद्धता की जांच कैसे करें। वाचन स्वर है सविता कुमारी का।
2: आज कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, फसल मनोनुकूल उत्पादन लेवाक लेल हम सब खाद और उर्वरक व्यवहार करे छी। मुदा उर्वरक व्यवहार कैलाक पश्चात ई बुझबा में अबैत अछि जे उर्वरक शुद्ध नहि छल, ओ हानिकारक तत्व सब सँ मिलाओल गेल रहैत अछि, जाहि सँ लाभक बदला हानि उठाबऽ पड़ैत अछि। एहि सँ बचबाक लेल हमरा लोकनि उर्वरक शुद्धताक जाँच स्वयं कऽ सकैत छी। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, यूरिया एक गोट एहन उर्वरक अछि जकरा मे लगभग 46% नेत्रजन पाओल जाइत अछि। ओ एकर रंग उज्जर साफ होइत अछि, ई गोल दाना में भेटैत अछि। यूरिया में जँ कोनो प्रकारक पाउडर देखबा में आबै तऽ बुझबाक चाही जे यूरिया में मिलावट अछि। यूरिया शुद्ध नहि अछि, यूरिया के पानि में घोरला पर घोल ठंडा होइत अछि। यूरिया के दाना के जखन लोहाक तब पर गर्म करब तऽ ई पहिने पिघलत, ओ फेर सब उड़ि जायत। गर्म कयला पर यूरिया जँ नहि पिघलत ओ उड़त तऽ बुझी जे यूरिया में फेट फाँट अछि, मिलावट अछि, ओ शुद्ध नहि अछि। दोसर अछि जिंक सल्फेट, एकटा सेहो उर्वरक अछि जकर रंग उज्जर मटमैला होइत अछि। ओ बाजार मे ढेपाक रूप मे भेटैत अछि, जाहि मे जिंक केर मात्रा 21% होइत अछि। जिंक केर कमी भेला पर फसलक विकास व उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ैत अछि। जिंक केर माटि मे कमी भेला पर एकर पूर्ति लेल जिंक सल्फेट उर्वरक व्यवहार कयल जाइत अछि। जिंक सल्फेट केर शुद्धताक जाँच करबाक लेल जिंक केर मिश्रण के 2 चम्मच लिए एकरा कांचक गिलास मे आधा गिलास पानि मे मिला कऽ फेर एकरा मे 2 चम्मच खाय वाला सोडा मिला दिए। एहन कयला पर उज्जर दूध जेहन फेन फेनाय लगैत अछि। फेन जँ कम होबै तऽ बुझबाक चाही जे जिंक केर मात्रा मिश्रण मे कम अछि। ई ध्यान रहे जे जिंक बाजार मे प्रायः सूक्ष्म पोषक तत्वक मिश्रण सभक संग मिलाओल भेटैत अछि। एहि तरहे उर्वरक के शुद्धताक जाँच कयलाक बाद ओकर उपयोग करबाक चाही, तखने लाभ भेटैत अछि। एकटा आओर उर्वरक अछि डाई अमोनियम फास्फेट, एहि उर्वरक के रंग उज्जर मटमैला वा भूरा कारी भऽ सकैत अछि। एकर दाना एकदम गोल नहि होइत अछि, एहिमे 18% नेत्रजन ओ 46% फास्फेट पाओल जाइत अछि। एकरा प्रचलित रूपमे DAP वा सेहो कहल जाइत अछि। एकर सुखल दाना के सीमेंट के पक्का पर खसा कऽ जूता पहिर कऽ रगड़ला सँ कड़कड़ाहट सँ फिसलैत अछि, ओ आसानी सँ नहि टूटैत अछि। DAP के दाना के तावा मे गर्म कयला पर ई साबुदाना जेना फूलैत अछि। नम दाना के अंगूठा ओ अंगूर के बीच मे रगड़ला सँ चिकनाहट बुझबा मे अबैत अछि। डाई अमोनियम फास्फेट के बुझायल चून मे मिलेला सँ अमोनिया के तीख गंध अबैत अछि। 1 ग्राम DAP के कांच के साफ गिलास मे लऽ कऽ ओहिमे 5 मिलीलीटर आसुत डिस्टिल्ड जल मिला दिए। जखन उर्वरक घुलि जाए तो ओकरा फिल्टर पेपर सँ छानि लिया। छानल घोल मे 1 मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट दऽ दी। पियर रंग के अपक्षेप बनैत अछि, एहिमे 5 सँ 6 बूंद नाइट्रिक एसिड दऽ दिए तो अपक्षेप घुलि जाइत अछि। अशुद्ध उर्वरक मे पियर पदार्थ नहि बनैत अछि। एहि तरहे अपने सँ उर्वरक के जाँच कऽ प्रयोग करबाक चाही, तखन उत्पादन नीक होइत अछि। एहि के संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी अपने सुनी कृषि चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुने स्वास्थ्य चर्चा। आज की चर्चा का विषय है आंख में पानी आना।

0: विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार झा। स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख से पानी बहने के बारे में। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार झा। डॉक्टर प्रदीप, आंखों से पानी का बहना आखिर किस वजह से और क्यों होता है?
1: हाँ, आंखों की जो बनावट है उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आंखों की बनावट में आंख से पानी जो निकलता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आंखों के में तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। एक मिबोबियन ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड है। अगर किसी ग्रंथि में किसी के वजह से माने कहीं भी कोई खराबी आ गई, यानी वो ब्लॉक हो गया, ग्लैंड में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो आपको आंख से पानी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी चश्मे की खराबी। यानी अगर आंख में दूरी नज़दीकी अगर आपको चश्मा लगती है या उसकी आपकी खराबी है, तो आप जो है सो आप आंख से पानी आ सकती है। तीसरी कारण हो सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस, यानी आंख में इन्फेक्शन होना। इसमें दो तरह का जनरली पाया जाता है, सब एक्यूट एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। वैसे कंजंक्टिवाइटिस बहुत तरह के होते हैं, जैसे वायरल वगैरह होते हैं, एलर्जी भी होते हैं जिसमें आँख में। तो बैक्टीरियल में क्या होगा कि आँख से पानी आएगा, उसके साथ मवाद भी आएगा, कीचड़ भी आएगा। अगर आँख से कीचड़ आ रहा है, अगर आँख सट रहा है, यानी स्टिकिंग ऑफ आईलिड्स हो रहा है, और बार बार जो है सो आँख से कीची पानी हमेशा आपको आप पोंछ रहे हैं फिर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। अगर आपको सिर्फ आंख लाल है, सिर्फ देखिएगा कि कॉर्निया के बगल में जो आपका बल्बर कंजंक्टिवा है, पल्पेब्रल कंजंक्टिवा है, तो अगर वो कंजंक्टिवा आपका अगर जो है सो कहीं पे आपका कंजेशन है और फिर वहाँ आपको कीचड़ नहीं आ रहा है, सट नहीं रहा है, सिर्फ लाल है, एकदम रेड लाल, तो आप ये समझ लिए कि आपको ये हो सकता है कि ये वायरल इन्फेक्शन हो, यानी वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जो आपको अपने आप एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। तीसरा टाइप है जो एलर्जिक, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो 0 to 12 यानी छोटे बच्चे से लेके 12 साल के उम्र तक ये अत्यधिक पाया गया है। उसके अलावा एडल्ट को हम आपको भी हो सकते हैं। तो उसका एक लक्षण है सबसे पहले कि मरीज को जो है ग्रीटनेस फीलिंग हुआ, लगा कि आंख में कोई चीज गर रहा है, और बार बार वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो आंख को रगड़ना शुरू करेगा। अगर वो आंख को बीच में रगड़ रहा है, देखिए गोला गोला रगड़ रहा है या कोने में रगड़ रहा है, तो आप ये समझिए कि उसको ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस
0: यानी उसको इचिंग होना, इचिंग होना, खुजली की तरह
1: तो उच्च नोचना है। तो लोग क्या करते हैं कि उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का यूज करते हैं, तो जो हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर एक्यूट स्टेज है, बहुत ज्यादा इचिंग है, तो हम 4-5 रोज कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, वो भी ये देखते हुए कि मेरे कॉर्निया यानी जो आंख का जो बाहरी लेयर है कॉर्निया, उसमें किसी तरह का एवरेजन तो नहीं है, कहीं पे घाव वगैरह तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है उसके पेरीफेरी ऊपर में एपिथेलियम लेयर में तो नहीं है। तो अगर वो अगर महसूस हो रहा है आपको कि हाँ ये इसको कंजंक्टिवाइटिस अगर एलर्जिक टाइप का है, तो आप एंटी एलर्जिक टेबलेट जो आपको लिवोसिट्रिजिन है या ये इबास्टिन है, समझा ना, फेक्सोफेनाडिन, लोटाडिन, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ज्यादातर कॉमनेस्ट हम लोग लिवोसिट्रिजिन यूज करते हैं, तो उसकी एक गोली अगर बच्चे हैं तो उसकी सिरप चलती है 1 चमचा रोज। सेकेंड एंटी एलर्जिक ड्रग आती है आंख में डालने की, ये अपने आप ठीक नहीं होता। कोई समझते हैं कि हाँ भाई हमको आंख नोच रहा है तो हम क्या करें, वो गुलाब जल से हम ठीक कर लें या पानी झोंक करके ठीक कर लें, ये हम लोग बहुत कम, जिसको अगर एलर्जिक है तो उस एंटी एलर्जिक दवा का उसको जरूरत पड़ेगी।
0: कुल मिलाकर 2 स्थितियां हैं आंख से जो पानी बहता है उसमें, एक खुजलाहट के साथ आंखों के लाल हो जाने के साथ
1: इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन में चला गया,
0: और दूसरा है कि बगैर किसी इन्फेक्शन के बगैर लाल हुए अगर आंख से पानी बहे, तो उस स्थिति में लोग क्या करें?
1: उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखिए कि अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तब आंख से पानी आ रहा है, तो इसमें कुछ चीज है जो कि आप ऐसे ही होता है, जैसे कि आप हंसते हैं आंख में पानी आ गया, या टॉयलेट करने गए, या आप थके हुए हैं, आप ज्यादा देर सोए नहीं, 6-8 घंटा सोना नहीं सोए, आप 2 घंटा सोए या 24 घंटा, तो आपको पानी आएगा, तो उसमें तो कुछ नहीं, आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं हमको ये सब कोई, तो आप रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, आप चश्मे की जांच कराइए, आंख में हो सकता है कि आपको चश्मे की खराबी हो। तीसरा, अगर आंसू का थैला जो नेरुज इलेक्ट्रामल डक्ट कि आंसू का नली अगर आपका ब्लॉक है, तो पानी आपको क्या होगा कि उसके वजह से नेजो इलेक्ट्रामल डक्ट के द्वारा नहीं जा करके आपका रिजर्जरेट करेगा, यानी उल्टा पानी फेंकेगा, तो आप देखिए कि अक्सर पानी आएगा, तो हमेशा आदमी उसमें देखिए हाथ वगैरह टच करते रहते हैं, होता हाथ से नहीं छूना है, हमेशा

0: हैंडकरचीफ साथ यूज करना।
1: कभी कभी किसी खास कारण से भी आंख से पानी, जैसे कि कंप्यूटर पर लगातार काम करने की वजह से, या फिर पढ़ाई करते रहने की वजह से, या कोई महीन काम, बारीक काम करने,
0: बारीक काम करने,
1: उस अवस्था में अगर पानी लगातार बहे आंख से, उसमें क्या करना चाहिए?
0: उसमें क्या है कि अगर कंप्यूटर आई सिंड्रोम है तो पहले रेस्ट टू द आई दीजिए, थोड़ा देर रेस्ट लीजिए। आप जैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इंटरवल लीजिए, 30 मिनट्स आप काम किया तो थोड़ा इंटरवल लीजिए, फिर काम में लगिए, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब फिर भी अगर आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आई स्ट्रेन ग्लास लगवाइए, -25 का स्फेरिकल ग्लास आता है जो आई स्ट्रेन में आता है, वो आप या ऑटो रिफ्लेक्टर ग्लासेस है, उसका सेवन कीजिए।
1: डॉक्टर साहब, आँख से पानी बहने इस विषय पर आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य चर्चा में आज आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आँख में पानी आने के बारे में, विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रदीप कुमार झा। आइए आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले देशभक्ति से जुड़ा ये गीत सुनते हैं।

विशाल मिश्रा और साथियों के स्वरों में देशभक्ति परक ये गीत आप सुन रहे थे। आइए सुने ये भजन पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आइए ये भक्ति गीत सुनते हैं साधना सरगम की आवाज में।

ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में। आइए कार्यक्रम के अंत में ये भजन सुनते हैं। स्वर है अलका याग्निक का।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान।
1: थ्री तीन आठ तीन

घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काक भुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काक भुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काक भुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काक भुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित हुए।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए, हाथों और

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर भूपिंदर सिंह का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। इसी सभा में 9:10 पर इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10 बजे। 11 बजे का समय उपशास्त्रीय संगीत का होगा। कलाकार होंगे पंडित भीमसेन जोशी। दिन में 11:30 का समय प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का होगा। मध्याह्न 12 बजे कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे। दोपहर 12:30 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी संसार। दिन में 1:15 पर फिल्म संगीत, साथ ही 2:30 पर भी कुछ फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे आज दिन में। लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 3 बजे। शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युवा वाणी। शाम 5:40 पर और शाम 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं सुनिएगा विद्यापति गीत में शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण प्रसारण में आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर। आज का अंक होगा जागरूक गांव। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस पर चर्चा होगी, साथ ही यातायात के नियमों के पालन के विषय में भी श्रोताओं को जानकारी दी जाएगी। शाम 7 बजे का समय किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी का होगा। जीवाणु खाद के महत्व और प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी किसानों को जानकारी की बातें बताई जाएंगी। सुनिएगा मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगरहार शाम 8:15 पर। आज रात 10 बजे का समय लोक गीतों के कार्यक्रम का होगा और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कुछ फिल्मी गाने हम आज रात 9:30 पर भी आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एकै क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब समाचार होंगे।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य

0: प्रधानमन्त्रिणा जार्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनच वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़

0: रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और साथ ही साथ कायम नैयर।
0: कायम जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब सुविचार से करी छी।
1: शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिसे समाज और देश दोनों बदले जा सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम ने कहा।
0: और जहन सुविचार सुन ले छी तो उनटबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में आजुका तिथि अर्थात 21 मई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नजर घुमा ली छी।
1: आज के इतिहास के बारे में अगर बातचीत करें तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हुई हत्या के बाद राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई। इसके बाद वीपी सिंह सरकार के तहत केंद्र में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। आज ही के दिन 1904 में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1918 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के में महिलाओं को मतदान का के लिए अनुमति दी गई।
0: तो इछल आजुक इतिहास और इतिहासक बाद हमरा लोकन आबी वर्तमान में। वर्तमान में अखन जे छै से जेठ मास चल रहा है। जेठ में मले मास जे अधिक मास कहै छै लोक ओकरा ओहो चल रहा है, आरंभ भ गेले। और गर्मी जेठक दुपहरिया तो ओहना सब दिन से नामी रहले है, तो से गर्मी अखन देखबा में आबि रहल है। प्रदेश के बहुत एहन हिस्सा है जत अधिकतम तापमान जे छै से 40-45 तक पहुँच रहले है। अपनो सभक ओत गर्मी के प्रभाव बढ़िया पड़ रहा है। तो एहना स्थिति में हमरा सबके चाही जे अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रही और रौद में नहीं निकली। रौद में निकलला से अहाँ के हानि भ सकैए, ओकर प्रतिकूल असर शरीर पर पड़ सकैए। ते कम से कम अगर जरूरत नहीं हुए तो घर में रही और रौद खत्म भेला के बादे घर से निकली, या तो भोर में काज कर ली या साँझू पहर काज कर ली। अगर बड जरूरी है तो माथ पर गमछा रख कर, कपड़ा रख कर, छाता ल कर अहाँ निकलू और काज क के जल्दिए घर घुरि जाओ। भर पेट पानि जे छै से निकलवा से पहिने जरूर पीब लिय, तो ई स्वास्थ्य के लेल अहाँ के बहुत बेसी आवश्यक है। और एकरा लेल बहुत बेसी तनाव में रहबा के काज से हो नहीं है, किया तो तनाव में रहला से स्वतः अहाँ जे छै से बेसी चिंतित रहब। कहल गेलै जे चिंता से चतुराई घटे या दुख से घटे शरीर। तो चिंता से अगर चतुराई घटे छै आ दुख से शरीर घटे छै, तो तनाव जीवन में एकटा बहुत महत्वपूर्ण बाधक छै आगा बढ़वा के लेल। तो तनाव में कखनो नहीं रहबा के चाही। आई के युग में अहाँ देखबे जिनके से गप हैत वह कहता जे हम तनाव में छी, हमरा बहुत टेंशन है। ये कौन बात के टेंशन है? जे टेंशन है अहाँ के मन में, ओकरा जे छै से अहाँ स्थिर से ओकर समाधान करू ने, जे किया टेंशन है, किया तनाव में छी अहाँ। आ तनाव के कारण बहुत रास बीमारी जे छै से अहाँ के घेर लिया, बीमारी सबके चक्कर में अहाँ पड़ जाइ छी। खास कर हाई ब्लड प्रेशर जे छै ओ ओकर जोड़ तनावे छै। तें तनाव मुक्त जीवन अहाँ कोना जीव, तै पर में गंभीर चिंतन हेबाक चाही और तनाव मुक्त रहबाक चाही। छोट छोट बात पर ककरो से विवाद नहीं हुए, कोनो कनेक लेब देव के लेल, कने एक बीत जमीन के लेल कि एक हाथ जमीन के लेल कतौ अहाँ के मन मोटाव नहीं हुए, कतौ टकराव नहीं हुए, एहि सब बात पर अगर ध्यान देबे ने तो तनाव स्वतः कम भ जायत। अहाँ रास्ता पर चल रहल छी, साइकिल चला रहल छी, मोटरसाइकिल चला रहल छी कि कार चला रहल छी, ओवरटेक करय के लेल अहाँ व्याकुल रहै छी, तऽ ओहिसँ की होइ छै तऽ स्वतः तनाव अहाँ के बढ़ैत चलि जाइए। तऽ एहि सब बात पर ध्यान देनाय बहुत आवश्यक छै, कि नहि कायम जी?
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: और तनावक जे स्थिति छै, चिकित्सक सेहो कहै छथि जे अहाँ तनाव में नहि रहू। तनाव में रहला से शरीरक बहुत रास एहन अंग छै जकरा पर प्रभाव पड़ै छै, आँखि पर प्रभाव पड़ै छै, हार्ट पर प्रभाव पड़ै छै, या अन्य कोनो जे चीज छै ताहि पर अंग सब पर प्रभाव।

0: पड़ै छै तऽ तनावमे किया रहब अगर हम सामान्य स्थितिमे रहब चिंता मुक्त रहब तऽ ओ हमरा लेल हितकर हैत स्वास्थ्यके लेल सेहो हितकर हैत आओर सामनेवलाके सेहो ओहिसँ जे छै से आनंद भेटतनि हुनको एहन नहि लगतनि जे हमरा सोझामे आबि कऽ आ ई जे छै से खाली टेंशन तनाव एहिमे छथि से नहि हेबाक चाही।
1: जी हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में तभी हम बहुत कुछ खुद के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मणिकांत जी ने पहले भी कहा कि गर्मी के मौसम में हम छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है, घर से निकलने से पहले हम पानी पी लें, धूप में ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, खुद भी अपने परिवार के लोगों को, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी, क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनको लगता है बहुत मज़ा आता है, उनको अगर आप किसी चीज़ के लिए रोकिए टोकिए नहीं तो भी वो बहुत सारी चीज़ों में शरारत करते रहते हैं। तो हमारा काम है कि हम बच्चों को, घर के बच्चों को भी समझाएं, खुद भी वो सारी चीज़ें करें जो बच्चे जिसे देख कर सीखते हैं। तो गर्मी के मौसम में खुद का ख्याल, यूँ तो हर एक मौसम में खुद का ख्याल रखना चाहिए और जो समय है, जो मौसम है, उसके हिसाब से चाहे वो कपड़ों का चयन हो, चाहे वो खान पान हो, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए।
0: और एखन जहन गर्मीके अहाँ चर्चा केलहुँ तऽ धियापुताके चर्चा तऽ स्वाभाविक छै, धियापुता स्वतंत्र उन्मुक्त होइए, ओकरा कोनो चिंता फिकिर सबसँ जे छै से दूर रहैए। जे तनावके हमसब गप कऽ रहल छी तऽ ताहि तनावसँ भेंट नहि भेल रहै छै बच्चा सबके, तनाव नामके चीज। हालाँकि आब इसकुल गेलाके बाद थोड़े थोड़े तनाव जे छै से बच्चा सबके बढ़ऽ लगै छै, जहन ओकरा टास्क पूरा करैके रहै छै, होमवर्क पूरा करैके रहै छै, तहन ओ तनाव जे छै से बढ़ै छै। लेकिन तकरा बादो भय मुक्त चिंता मुक्त जे छै से जीवन रहै छै बालपनमे, तऽ ओहि कालमे अभिभावकके ई कर्तव्य होइ छनि जे ओहिपरमे ओकरापर ध्यान देथि आ ओ कतऽ की कऽ रहल हइ, ओकर गतिविधि केहन भऽ रहलैए, ताहिपरमे जे छै से अगर अहाँ अभिभावक ध्यान नहि देबै तऽ बच्चा भऽ सकैए जे आगाँ बढ़ि कऽ गलत दिशामे पहुँच जाए, गलत डेग उठाबै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से सब अभिभावकके, माता पिताके, दादा दादीके कि नाना नानीके, सब गोटाके ई कर्तव्य बनै छै जे धियापुतापरमे ध्यान राखी, नजर राखी जे ओ की कऽ रहल हइ, कोन काज कऽ रहल हइ, केना चलि रहल हइ, ओकर जीवन शैली की छै, एहिपरमे जे छै से सब गोटा अगर ध्यान देबै ने तऽ बच्चा बहुत आगाँ बढ़त। आ स्वाभाविक छै, अहाँ कहलहुँ हँ कयामजी जे धियापुता जे छै से नकल करऽके बहुत प्रवृत्ति ओकरामे बहुत तेज होइ छै, बहुत प्रबल होइ छै, तऽ जे अहाँके देखत बच्चा वएह काज बच्चा करै छै, से अहाँ सब घरमे ओहि बातके देखैत हेबै जे अगर अहाँ पलथी मारिके बैसै छी तऽ अहाँके बच्चो पलथी मारिके बैसत, अगर अहाँ चौकीपर बैसबै तऽ बच्चो चाहत जे हम चौकीपर बैसी, जेना अहाँ भोजन करबै तहिना बच्चो भोजन करै छै। चिकित्सक सेहो कहै छथि जे बच्चाके सँ जे काज अहाँ लेबऽ चाहै छी ओ काज स्वयं अहाँ करू, अगर अहाँ स्वयं करब तऽ ओ अहाँके जे छै से बच्चा अहाँके देखा देखी जे छै से ओ करैत रहत। तऽ तैँ एहिसब बातपरमे ध्यान आ स्वास्थ्यपरमे तऽ स्वाभाविक छै जे अहाँके निश्चित रूपसँ चैंक रहबाक चाही आओर अपना स्वास्थ्यके प्रति सचेत तऽ रहबे करी, धियापुताके स्वास्थ्यके प्रति, माता पिताके स्वास्थ्यके प्रति, मने परिवारक सब सदस्यके स्वास्थ्यक प्रति अगर सचेत रहब तऽ अहिना तनावसँ मुक्त रहब। तैँ हमरा सबसँ आग्रह, हमर सबक आग्रह जे अपने लोकनि चिंता मुक्त रही और चिंता नहीं करी, चिंतन करी, चिंतन कला से जे छै से तनाव स्वतः कम भ जाए छै और एहिमे तनाव के कम करय में गीत संगीत के सेहो बड़ भूमिका रहै छै। तो से अगर भूमिका रहै छै तो खाली कथनी में नहीं, करनी में हम सब चाहै छी जे करी ओकरा और सुनी सुंदर सनक मैथिली सुगम संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये मैथिली सुगम संगीत बिल्कुल पसंद आया होगा और समय के साथ यूं ही चलते रहना चाहिए और समय के साथ चलना ही हम सब के लिए ज़रूरी है। और हम भी कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा से सारे कार्यक्रमों को आप तक समय के साथ पहुंचाएं। और अब वक्त हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे मणिकांत झा।
1: नमस्कार। राज्य के तकनीकी संस्थान में युवा विशेषज्ञ पेशेवर के नियुक्त हैं। कैबिनेट विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा और ओकर अधीनस्थ इंजीनियरिंग आ पॉलिटेक्निक संस्थान में तकनीकी आ विशेषज्ञ सेवा के लेल युवा पेशेवर चयन नीति 2026 के मंजूर कर दलक है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भौतिकी विभाग में काल नैनो पार्टिकल्स एवं ओकर अनुप्रयोग विषय पर सेमिनार के सफल आयोजन कैल गेल। रिसोर्स पर्सन लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलवर राजस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जे आर अंसारी नैनो पार्टिकल्स के विविध अनुप्रयोग पर प्रकाश दैत कहलनि जे नैनो तकनीक के उपयोग कॉस्मेटिक्स क्वांटम आधारित LED दवाई वितरण प्रणाली तथा चिकित्सा सनक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य भर में

गर्मी बहुत बेसी बढ़ि गेलै, कतौ शुष्क हवाके प्रभाव बनल अछि तऽ कतौ नमीके प्रभावसँ पसेनावला गर्मी सेहो भऽ रहल अछि। पटना सहित अधिकतर जिलामे भोरे 8 बजेसँ कड़गर रौद असहनीय हुअ लगैए। काल्हि राज्यके 25 शहरके अधिकतम तापमानमे बढ़ोतरी दर्ज कयल गेल। राज्यमे सर्वाधिक अधिकतम तापमान भभुआमे 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल। राज्यके 9,347 लोक एहि वर्ष लघु उद्यमी बनताह। हिनका कारोबारके लेल 10 लाख टका देल जेतनि। उद्योग विभाग सभागारमे काल्हि कार्यक्रममे कम्प्यूटर लॉटरीसँ हिनक चयन कयल गेल। प्रक्रिया पूर्ण रूपेण पूरा भेलाके बाद उद्योग मंत्री शेषी सिंह लाभुकके नामक घोषणा कयलनि। औपबंधिक रूपसँ चयनित 9,347 लाभुकके आवेदनके आब स्क्रूटनी होयत। एहि दस्तावेजके सत्यापन होयत। सत्यापनके बाद पात्र लाभुकके अंतिम चयन सूची उद्यमी पोर्टल पर प्रकाशित कऽ देल जायत। बिहार पुलिसके इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टमके डायल 112 कॉल सेंटर शीघ्रहि NHAI, पथ निर्माण, भारतीय रेलवे और CCTNS सँ जुड़ि जायत। एहिसँ सड़क और रेलवे क्षेत्र में आकस्मिकता के स्थिति में पीड़ित के तत्काल राहत पहुँचब आसान भऽ जेतनि। संगहि राज्य के प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर पैनिक बटन सेहो लगायल जायत। भारत नेपाल सीमा सड़क के निर्माण अगिला मास यानी जून में पूरा कऽ लेल जायत। 7 जिलासँ गुजरवला एहि सड़कके 538 किलोमीटर लंबाईके निर्माण पूरा कयल जा रहल है। आब मात्र 16 किलोमीटरके निर्माण शेष रहि गेल है, जाहि पर तेजीसँ काज चलि रहल है। ई सड़क कुल 554 किलोमीटर लंबा है। सीमा सुरक्षा आ लोक के बेहतर आवागमन के ध्यान में रखैत एहि सड़क के निर्माण करौल जा रहल है। बिहार में 7 जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया आ किशनगंज से ई सड़क गुजर रहल है। एहि में पूर्वी चंपारण जिला में 11 और किशनगंज में 5 किलोमीटर लंबाई में सड़क के निर्माण शेष रह गेल है। एहि सड़क के निर्माण में भारत सरकार के करीब 4,000 करोड़ और बिहार सरकारक 2,800 करोड़ रुपया सँ अधिक खर्च भेल है। सड़क निर्माण के लेल भूमि अधिग्रहण पर संपूर्ण खर्च बिहार सरकार द्वारा कयल गेल है। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के बैसार में काल अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर अध्यक्षता में निर्माणाधीन नव टर्मिनल भवन के प्रोजेक्ट कार्यालय कक्ष में बैसार कयल गेल। बैसार के समिति के गत 3 सितंबर का भेल बैसार के प्रस्ताव के अनुपालन के समीक्षा सेहो भेल। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर कयल जेबा के आश्वासन के लेल मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करैत कहलनि जे एकरा लेल बिहार विधानसभा के दुनू सदन सँ प्रस्ताव पहिने पठाओल जा चुकल अछि आ एकरा लेल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बैसार में लेल गेल प्रस्ताव सँ अवगत करेबाक निर्देश सेहो देल गेल। ओम्हर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा नई दिल्ली में काल्हि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राजमोहन नायडू सँ भेंट कऽ दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन स्थायी सिविल इनक्लेव के सब कार्य आगामी नवंबर माह तक पूर्ण करेबाक तथा एतौ सँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करबाक अनुरोध कयलनि। एहि मध्य केंद्रीय मंत्री नायडू हुनका आश्वासन देलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करबाक लेल अपन विभाग सँ संबंधित जरूरी कार्रवाई आगामी नवंबर तक पूर्ण करा लेता। एहि सिलसिला में गृह मंत्रालय सँ जुड़ल विषय पर सेहो जरूरी सहयोग लेल जा रहल है। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी। दिल्ली विधानसभा के दिस सँ प्रकाशित शताब्दी यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक में एहि बेर दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह आ रामेश्वर सिंह के जगह देल गेलनि हैं। एहि अवसर पर दरभंगा राज्य परिवार के सदस्य आ कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट के ट्रस्टी कुमार कपिलेश्वर सिंह काल्हि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र

0: ताके भेंट कऽ कऽ हुनका वरिष्ठ इतिहासकार तेजगर झा द्वारा लिखित पुस्तक राज दरभंगा भेंट कयलनि। आगामी बकरीद पर्व के स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न करेबाक लेल दरभंगा नगर निगम तैयारी तेज कऽ देलक। एहि क्रम में काल्हि नगर निगम सभागार में महापौर अंजुम आरा के अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैसार आयोजित कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी गृह विज्ञान विभाग के तत्वावधान में स्वच्छता एवं साफ सफाई विषय पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। अध्यक्षता करैत विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हांसदा कहलनि जे स्वच्छता मात्र आदत नहि बल्कि एक श्रेष्ठ संस्कार अछि जकर शुरुआत स्वयं सँ हेबाक चाही। भारतम मिशन के अंतर्गत जिला कल्याण एवं संस्कृति पदाधिकारी काल्हि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के संरक्षण में उपलब्ध पांडुलिपि के सर्वेक्षण कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमारक अध्यक्षता में काल्हि नव सृजित डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत जुलाई से पठन पाठन प्रारंभ करेबाक लेल संबंधित अधिकारी एवं प्राचार्य लोकनिक संग समीक्षा बैसार कयल गेल। उर्दू निदेशालय के तत्वावधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन काल्हि समाहरणालय दरभंगा सभागार में कयल गेल। कार्यक्रमक उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आनंद कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ कऽ कयलनि। एहि संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: हालचाल के बाद अब श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:35 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: तो ई छल लोकल अपडेट, और लोकल अपडेट सुनला के बाद कार्यक्रम में डेग आगा बढ़ाबी। तो इससे पहले हमरा लगैया जे गीत संगीत दिस गेनाइ जे छै से बहुत आवश्यक छै, किया तो गीत संगीत पे एहन शक्ति छै जे लोक के केहनो कानलो मुँह के जे छै से हँसा दै छै, कानलो मुँह में आनंद आनि दै छै, ओकरा भीतर से एकटा उत्साह के प्रवाह जे छै से हुअ लगै छै। तैं गीत संगीत जीवन के एकटा प्रमुख स्तंभ अगर कही तऽ अइ, और पहले से कहल गेल छै जे कानब आ गायब सब के अबै छै, तऽ से जहन जे चीज सबके आबै आ तकरा पर सबमे एते विलम्ब हुए से उचित नहि, की कहब
1: जी। हाँ बिल्कुल, और किसी भी चीज के लिए गीत संगीत का होना बिल्कुल जरूरी है, हर वो पल हर वो चीज के लिए। और हम लोगों ने चर्चा भी किया और चर्चा इस पर करेंगे भी कि हम तनाव से हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गाना सुनना भी पसंद आता है, कहीं घूमना भी पसंद आता है। तो फिलहाल श्रोताओं को उनके रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

रे बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है। वास्तव में अगर दिल से दिल मिल जाए तो जे तनाव के यहाँ चर्चा करी छूँ हैं कयाम जी, वो तनाव तो स्वतः दूर भ जाए छे। तो हृदय के मिलन जे छे से बहुत आवश्यक छे। ककरो संगे मित्र के संगे या सखा के संगे परिवार के संगे अहाँ अगर आत्मीयता से बात करी छी, आत्मीयतापूर्वक रही छी, तो स्वतः अहाँ के तनाव जे छे से दूर रहत। और तनाव दूर रख

0: के लेल बहुत रास जे साधन छे ताहिमे एकटा इहो छे जे अहाँ योग करू। योग कयलासँ सेहो तनाव कम होइ छै, ध्यान कयलासँ सेहो तनाव कम होइ छै। तऽ तनाव कम रखबाक लेल बहुत रास साधन छै आ तनावके एकटा जड़ि इहो छै जे आमदनी अठन्नी आ खर्चा रुपैआ। ई तनावक एकटा बहुत महत्वपूर्ण जे छै से कारण छै। अपन आमदनीके हिसाबसँ खर्च करब जे छै से जीवनमे ओ धारण करबाक चाही लोकके, जे हम जतेक आमदनी हमरा अइ ओहि हिसाबसँ हम अपन खर्चा करब, तेती पाँव पसारिए जेती लम्बीसँ। तऽ ई चीज जे छै से एहि सूत्रपर, एहि मूल मन्त्रपर अगर केओ गोटे चलै छी तऽ हुनका फेर जीवनमे कखनो असुविधा नहि, कखनो दिक्कत नहि अइ, कि नहि?
1: जी हाँ, बिल्कुल। और तनाव

0: आमदनी 98 आ खर्चा रुपया। ई तनावक एकटा बहुत महत्वपूर्ण जे छै से कारण छै। अपन आमदनी के हिसाब सँ खर्च करब जे छै से जीवन मे ओ धारण करबाक चाही लोक के, जे हम जतेक आमदनी हमरा अइ ओहि हिसाब सँ हम अपन खर्चा करब, तेती पाँव पसारिये जेती लंबी सँ। तऽ ई चीज जे छै से एहि सूत्र पर, एहि मूल मंत्र पर अगर केओ गोटे चलै छी तऽ हुनका फेर जीवन मे कखनो असुविधा नहि, कखनो दिक्कत नहि, कि नहि?
1: जी हाँ बिल्कुल। और तनाव का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ है, जो हमारी आमदनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि तनाव हम कितना झेल पाते हैं। और तनाव में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम मतलब हो जाना है, क्योंकि काम करते हैं, भाग दौड़ भरी इस जीवन में हम काम करते हैं, और जहाँ काम है वहाँ तनाव और थकान का होना एकदम बिल्कुल है, होगा ही। तो उसको कम करने के लिए, जैसा कि मणिकांत जी ने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, योग करना है, साथ ही साथ पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार का सेवन करना, ये भी ज़रूरी है। जब तनाव में हम महसूस करते हैं अपने आप को, तो कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेकर योग का ध्यान, और रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें, मानसिक शांति मिलती है इसे। सोने से एक घंटा पहले कम से कम मोबाइल, लैपटॉप को, इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर रख लें। ताज़े फल, हरी सब्जियाँ का भोजन करना ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद लेना ज़रूरी है अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं। और तनाव में दो चार चीज़ें हो जाती है कि एक तो काम की परेशानी है, और उसमें आप अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, गुस्सा आने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं घूमने जाना पसंद होता है, उससे तनाव थोड़ा कम होता है। अगर आप काम की वजह से, किसी अन्य कारणों की वजह से भी तनाव महसूस कर रहे हैं, तो अपने मनपसंद जो आपका कोई खेल है, कुछ देखना या कुछ भी ऐसा, कहीं घूम लेना या खेल खेलना पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ गीत संगीत सुनना भी पसंद होता है लोगों को, जिससे तनाव कम होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में आदत डालें तो तनाव कम होगा, और तनाव जहाँ कम होगा तो फिर हमारी आमदनी भी बढ़ेगी।
0: ठीक बात। और आमदनी बढ़त तो अहाँ के जो मनोभिलाषा है से अनेरे पूर्ण होते रहत। तो वो आमदनी बढ़ेबा के लेल अहाँ के किछ काज करय पड़त, किछ उद्यम करय पड़त, और उद्यम जे करैए तक से कखनो खाली हाथ नहीं रहैए, इहो बात तय छै। तैं उद्यम करैत रहबाक चाही। उद्यम जे करी, जे कोनो काज अहाँ करै छी, ओहि काजमे जाहिमे अहाँके गुणवत्ताके जाहिमे अहाँके महारत जाहिमे हासिल अइ, तऽ ताहिमे अहाँ आगाँ बढ़ैत रहू, ओहिमे अहाँ पाछाँ घूमि कऽ नहि ताकू। जेना पढ़ाइए लिखाइमे केओ अहाँ अगर मैथमेटिक्स लऽ कऽ पढ़ि रहल छी, गणितके पढ़ाइ कऽ रहल छी, तऽ अहाँ ओहिमे आगाँ बढ़ू। केओ जीव विज्ञानसँ पढ़ि रहल छी तऽ ओहिमे आगाँ बढ़ू। केओ कलाके क्षेत्रमे छी तऽ अहाँ ओहिमे आगाँ बढ़ू। जाहिमे छी ताहिमे निष्णात होउ, एहि बातके ध्यान अगर अहाँ देब। कोनो काज जीवनमे जे करै छी अहाँ, तऽ ई बुझि कऽ नहि करू जे ई काज छोट छै आ ई काज पैघ छै। जे काज जे करैए ओकरा लेल वएह काज पैघ छै। तऽ एहिसब बातक ध्यान अपना जिन्दगीमे, अपना जीवनमे अगर अहाँ रखै छी, तऽ अहाँ स्वतः जे छै से तनाव मुक्त रहब। आ जे खर्चा आमदनीवला बात कहलहुँ हैं, ओहूपरमे ध्यान दै छै, ओकर बैलेंसिंग जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै। अहाँके जतेक सीमित आय अइ ओहि आयमे अहाँ अपन जीवन बसर करू, नहि कि देखाउंस करू कि हमरा पड़ोसियाके ई भऽ रहलैए तऽ हमरा किया नहि हैत। भऽ सकै छै अहाँके पड़ोसियाके जे छै से आमदनी बेसी होइन, अहाँके पड़ोसिया अहाँसँ बेसी कमाइत होइत, तऽ ओ हुनकर रहन सहन, हुनकर खान पीन जे छै से दोसर ढंगक होइन, तऽ ओहि देखाउंसमे अहाँके आमदनी कम अइ। आ तैयो अहाँ अगर ओहि देखाउंसमे पड़ि जाइ छी तऽ फेर जे छै से अहाँ अपटी खेतमे पड़ि जायब। तैँ ई काज कखनो नहि करी, पड़ोसियाके या ककरो देखाउंसमे नहि पड़ि कऽ अहाँके जे अपन आयके स्रोत अइ, अहाँके जे अपन आमदनी अइ, ओही आमदनीमे अहाँ जीवन बसर करू। आ भारत एहन देश छै जाहिठाम सब तबकाके लोकके जे छै से निर्वाह होइ छै, जकरा कम आमदनी छै कमो आमदनीवला जे छै से जीवन बसर करै छै, आ अरबपति खरबपति जे छथि हुनको गुजर बसर होइ छनि। तैँ आ एकटा आओर स्रोत कहल गेलैए

0: स्रोत नहि ओकरा ई कहियौ जे वाक्य छै जे अगर अहाँ बहुत कष्टमे छी, अहाँके लगैए जे हम बहुत गरीब छी, हमरा लगमे बहुत जे छै से अभाव अइ, तऽ अहाँ अपनासँ नीचाके देखियौ जे अहाँसँ बेसी अभाव जकरा छै ओ केना गुजर बसर कऽ रहलैए। तऽ ओकरा देखिके अहाँ अपनाके संतोष व्यक्त कऽ सकै छी जे हम अरे राम हमरासँ तऽ ओ बेसी कम कमा रहल है, हमरासँ ओकरा बेसी अभाव छै, लेकिन तैयो ओ हँसी खुशी जीवन बिता रहल है, तऽ ओकरा देखिके अहाँ संतोष कऽ सकै छी। आओर दोसर बात ओकरा सङ्ग सङ्ग कहल गेलै जे अहाँ बहुत अहंकार भऽ जाए जे हमरा लगमे बहुत चीज अइ, हमरा बहुत पाइ अइ, तऽ तहन अपनासँ ऊपरवलाके देखिए जे अहाँसँ ऊपर सेहो बहुत लोक छै जे कमा रहलैए, अहाँसँ ऊपर सेहो बहुत लोकके पाइ छै, तऽ ओहि कालमे जे छै से अहाँके फेर मोन ठेहिया जायत आओर बुझि जेबै जे नहि हमरासँ बेसी सेहो सम्पत्ति बड़ लोकके छै, तैँ हम कतौ नहि छी। तऽ एहि बातके अपनासँ ऊपरवलाके अपनासँ नीचावलाके अगर अहाँ देखैत रहबै तऽ अहाँके जीवनमे कखनो कोनो कष्ट नहि हैत, अहाँ अपन जीवनके निर्वहन जे छै से बहुत नीक ढङ्गसँ करैत रहब।
1: जी हाँ बिल्कुल, एक कहावत भी है और कहा भी जाता है कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से आप खर्च करें। आप कमाने में किसी का कंपटीशन कर सकते हैं, किसी का देखा देखी कर सकते हैं कि फलां आदमी हमसे बड़ा है तो हम मतलब अपने हिसाब से काम करके वहाँ तक पहुँचें, अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचें, ये ज़रूरी है ये। लेकिन अगर आप देखा देखी किसी का खर्च करते हैं कि वो इतना खर्च करता है तो मैं भी इतना ही खर्च करूँ, तो उससे आपकी का ही नुकसान है, आप घाटे में चले जाएंगे। तो ज़रूरी यह है कि हाँ बिल्कुल मणिकांत जी ने सही कहा कि जब आप किसी अपने आप को कम समझते हैं या लगता है आपको कि हम बहुत बड़े हैं, तो ऐसे हालात में आप जो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं उनको देखिए, उनकी कमाई उनके खर्च को देखिए। जब आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए कि आपके पास, फिर उससे लगेगा कि उससे ज़्यादा आपको सब कुछ है। तो कहने का ये मतलब है कि हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए अपने कमाई के प्रति, जो हमारे पास जो काम है उस काम में लगन मेहनत ईमानदारी होनी चाहिए। उस काम के प्रति आप लगन और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश बिल्कुल पूरी होगी। ज़रूरी है कि लेट किसी चीज़ में लगता है देर से ही सही, लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सच्चे दिल से निष्ठा के साथ आपको काम करना होगा। किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है, जलन करने की ज़रूरत नहीं है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरक्की एक दूसरे को रास नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों से बचने की भी ज़रूरत है, तो ही आप अपने आप को तनाव मुक्त मानेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी जब बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, और खर्च को हम लिमिट के साथ करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सफल और तनाव मुक्त वित्त जीवन का मन जो मूल मंत्र है, इसका सीधा अर्थ यह है कि आप कमाई से अधिक खर्च ना करें और भविष्य के लिए कुछ बचाकर अवश्य रखें। पहले बचत करें फिर खर्च करें। अपनी सैलरी आमदनी आते ही सबसे पहले एक निश्चित राशि का 10-20% अलग निकाल दें। अपने खर्चों को दो हिस्सों में बांटें, जैसे किराया, मकान का, भोजन, बिल। जब उससे आपको बचता हो तो अपनी चाहतों पर खर्च करें, जो आपकी ख्वाहिश है कि आज मुझे इस महीने इस चीज़ों को लेना है या इस महंगी चीज़ को लेना है। उसके बाद अगर आपके पास बचता है तो अपने दिल अपनी ख्वाहिशों को सुने, तो ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ही हम बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं।
0: मूल रूप छै जे जीवन में जे आवश्यक आवश्यकता छै, जे मूलभूत आवश्यकता छै, ओकर पूर्ति तो हेबाक चाही। ओहिमे रोटी कपड़ा और मकान ई अहाँ राखि सकै छी, तऽ एकर जे आवश्यकता छै एकर पूर्ति तो निश्चित रूपसँ प्राथमिकतापूर्वक हेबाक चाही। तकरा बाद छै जे भौतिक उपलब्धता या भौतिक सुख के लेल जे चीज अहाँ लै छी तो ओकरा सबमे कमोबेश जे छै से अहाँ सामंजस्य स्थापित कऽ सकै छी, और अपन आमदनी के हिसाब सँ अपना आय के हिसाब सँ ओकरा अहाँ निर्धारण करू जे हमरा कते आमदनी अइ आ हमरा की लेबाक चाही की नहि लेबाक चाही। आ एहन नहि जे आब अहाँ कर्जामे डूबि जाय। एखन देखबै ने कयाम जी, बहुत लोक एहन छथि जे अपसियात रहै छथि की यौ की बात, तऽ हमरा EMI चुकाबऽके, कथीके EMI चुकाबऽके, तऽ हम फलां चीज किन लेने छी, हम कार किन लेने छी 40 लाखके कि 20 लाखके, आ ओकर जे आब देबै EMI से हमरा नहि जुड़ैए। तऽ भाई किया अहाँ 40 लाखके कार किनब अगर अहाँके सामर्थ्य नहि अइ, अहाँके आमदनी

के स्रोत ओते नहीं है तो अहाँ देखौंस में किया जाए छी अहाँ कमे दाम के काज किनू क्यों मोबाइल देखबे कते के लेने छी अहाँ के हाथ में मोबाइल है तो 1.5 लाख रुपया के मोबाइल है किया 1.5 लाख रुपया के मोबाइल है तो अहाँ के आमदनी ओते है जै काज 10 लाख 10,000 वाला मोबाइल करी छे ओहू में गप हुई छे ओहू में फोटो खींचे छे खासकर नव तुरक जे लोग छथि हुनका सबके देखाउस के कने बेसी ऐ में जे छे से भ गेलन है आ ओहि में बजट गड़बड़ा जाइ छे जे चीज के अहाँ चर्चा कर रहल छी जे आमदनी से फाजिल खर्च नहीं हेबाक चाहिए तो स्वतः भ जाइ छे खर्च देखाउस के चक्कर में तो से देखाउस नहीं करबाक चाहिए और हमू सब गप सप में बेसी नहीं भसियाए और गीत सब संगीत दिस चली सुंदर सनक एकटा गीत के आनंद ली तकरा बाद बढ़ी आगा

0: धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। बहुत सुंदर ई गीत जे छै से अखन हमरा लोकन सुन रहल छलहुँ हैं। उम्मीद करै छी जे अपनो लोकन के नीक लागल हैत। और नमस्कार मिथिला कार्यक्रम अपने प्रत्येक दिन सुनै छी आकाशवाणी दरभंगा सँ भोर में 7:05 सँ 7:55 पर। और आब जहन टेक्नोलॉजी के युग छै तऽ हर मोबाइल में रेडियो उपलब्ध छै और न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कऽ कऽ अहाँ देश दुनिया में कतौ छी तऽ अपना कार्यक्रम के अपन आकाशवाणी दरभंगा के सुनि सकै छी। तऽ हम चाहब जे आब चलैत चलैत हमरा लोकन समसामयिक घटना पर एक नजर घोरा ली। उपस्थित छथि लऽ कऽ कयाम नैयर।
1: भारत और इटली 2027 को सांस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाएंगे। 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच शाम 7:30 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
0: तो इच्छल समसामयिक घटना पर एक नज़र। आप जे छे से हम एक बार पुनः अपने लोगन से आग्रह करब जे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम अपने के केहन लगे है तकर सूचना हमरा लोगन तक जरूर पहुंचाओ। और हमर पता अहाँ के तो बुझल है लेकिन एक बार फिर दोहराबै छी, कार्यक्रम नमस्कार मिथिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड छै 8460004। अ पर में पत्र लिखू और पत्र लिख कर हमरा सबके सुझाव दिया जे कार्यक्रम में की सुधार चाहे छी अपने। एकरा अतिरिक्त अहाँ SMS से सेहो हमरा पठा सकै छी, तकर पता बुझल है। ईमेल सेहो कह सकै छी, ओहो पता अपने के बुझल है। तो आब आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम से मणिकांत के
1: और कयाम नैयर को दीजिए आज्ञा।
0: नमस्कार मिथिला।

नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच

0: सब दिन बर तुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, समाचारों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट

0: पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को

0: जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ तुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ

0: में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership,

0: मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिज़ाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिज़ाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी का यह इटली का पहला दो तरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जेती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज़ का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फ़रोग देने और मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इक्तसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर ज़रूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना ज़िले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज़ में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिना छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थी। 2 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है।

0: की है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तावुन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी

0: की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है, उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश पर्वतानेनी ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमरीका के क्याम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजिर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है। अमरीका 4 जुलाई को आज़ादी के ऐलानिये पर दस्तखत किए जाने के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। जनाब रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्तोदुलिदिस कल शाम भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सती वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्तोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्तोदुलिदिस का ये दौरा भारत कुब्रुस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। हलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था।

0: आईपीएल क्रिकेट में कल रात ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अनितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वज़ीर आज़म जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करने से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज़ हकूक से महरूम करने के मुतरदिफ। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए ज़मीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा चिन्हित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहाँ चलती है, इधर तो
6: इधर आइए। इधर
7: इधर
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06122।

0: 5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राशि का हस्तांतरण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के छठे राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस स्थिति से बचने के लिए 2021-25 तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में वायल राइस उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है।
1: नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गयाजी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के अंतर्गत अब रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन विभाग और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। राज्य तकनीकी सेवाएं और संचार के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
2: डायल 112 पूर्ण तरह से निःशुल्क सर्विस है और अभी

0: इसमें हम लोग और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे, जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे, जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाएं। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए।
1: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,347 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने योजना के अंतर्गत आवेदकों का औपबंधिक चयन किया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 3 किस्तों में लगभग 910 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 50% राशि अनुदान और 50% राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले के महसी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को मामले की अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाह फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, गया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान रोहतास का डेहरी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.5, छपरा का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 जून तक जारी रहेगा। प्री स्कूल,

आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के व्यापक उत्खनन के लिए 10 वर्ष की परियोजना शुरू करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर श्री झा ने दरभंगा स्थित मिथिला शोध संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने का भी आग्रह किया। रेलवे ने वाराणसी मंडल को गोरखपुर कैंट पनियहवा रेलखंड के उन्नौला पिपराई स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को लेकर 8 जून तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इसके चलते नरकटियागंज गोरखपुर कैंट खंड की कई सवारी रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं लालकुआं कोलकाता स्पेशल ट्रेन, दिल्ली मोतिहारी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सीतामढ़ी और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन समेत 16 स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 13 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इधर रेलवे ने दानापुर मंडल के नवादा और बारसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बाघी बर्डिया स्टेशन पर जमालपुर गया मेमू ट्रेन को 25 मई से 1 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चाय के टिकाऊ उत्पादन, उपभोग और व्यापार को बढ़ावा देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। चाय का उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चाय की उत्पत्ति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी यह 1,30,00,000 से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव तस्करी, मादक पदार्थों के सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, अतिक्रमण और जाली नोटों पर अंकुश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय जिलाधिकारी आनंद शर्मा और नेपाल के सिराहा जिला के CDO सुरेंद्र पोडेल शामिल समेत दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सारण जिले के छपरा में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने पर जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 106 पंचायत सचिवों पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस राशि की कटौती पंचायत सचिवों के वेतन से की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। औरंगाबाद जिले में रिसियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौके से सिलेंडरों के अलावा 90 गैस पासबुक, उज्ज्वला गैस चूल्हा तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के नौबतपुर में CDPO कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली के तहत यह राशि ले रहा था। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

हिंदुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी 2027 सिविल सेवा प्रीलिम्स 23 मई को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.

इन पर नव भारत नव आकाशवाणी। साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।

दोबारा से अंजुमन में आप सभी का इस्तकबाल है। शगुफ्ता हाजिर है एक बार फिर आपकी अंजुमन लेकर। सामीन, आज की तारीख उस शख्सियत की योम वफात की याद दिलाता है जिसे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनने का इजाज़ हासिल हुआ। जी हाँ सामीन, आज 21 मई 1951 को एक खुदकश हमले में इंतकाल करने वाले राजीव गांधी की शख्सियत पर एक मुख्तसर से गुफ्तगू लेकर हम हाजिर हैं। राजीव गांधी को जदीद हिंदुस्तान का मेमार माना जाता है। उनके दौरे हुकूमत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में इनकलाब आया था। जी हाँ सामीन, हमारी ये मुख्तसर से गुफ्तगू चलती रहेगी। फिलहाल आइए एक और प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। हरी हरन की आवाज़ में सजी ये खूबसूरत सी गज़ल समात कीजिए।

0: एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं अंजुमन में। सामीन, मुल्क में कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद और टेली कम्युनिकेशन को वसत देकर आवाम तक राजीव गांधी जी ने पहुंचाया। नौजवानों को मुल्की सियासत से जोड़ने के लिए वोटिंग की उम्र 18 साल कराई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे और नौजवानों को मुल्क की सियासत से जोड़ा जा सके। हमारी इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे सामीन हजरात, लेकिन फ़िलहाल वक्त का इशारा है कि आज की खास पेशकश अफसाना समाप्त किया जाए। तो आइए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा अफसाना निगार रुमाना तबस्सुम की तरफ रुख करते हैं और समाप्त करते हैं अफसाना जिसका उन्वान है तलाश।
1: गोपाल अपनी बीवी बच्चों के साथ चारपाई पर सोया हुआ था कि तेज आंधी गरज और बारिश के साथ ओले पड़ने की आवाज़ से इसकी आँख खुल गई। वो चारपाई पर से बेख्तियार उठकर दरवाजे पर आ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आंख में धूल पड़ने से इसकी आंखें खुल नहीं रही थीं। दोनों हाथों से आंखों को रगड़कर बिदबिदाने लगा। सभी फसलें तैयार हो चुकी थीं। कुछ ही दिनों में इनकी कटाई शुरू होनी थी। आंधी के साथ इसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। दलान में टंगा लालटेन भी आंधी की वजह से हिल रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता धूल से भरी आंखें खोली और खूंटी में टंगा छाता निकाला और लालटेन लेकर बाहर जाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी तेज आंधी में कहाँ जा रहे हो? इसकी बीवी गौरी ने हाथ से छाता और लालटेन लेकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। खेत पर फसलें देखने, गोपाल ने लालटेन दोबारा गौरी के हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा। इतनी तेज आंधी और ओले पड़ने में बाहर निकलने का है? बाहर आंधी में लालटेन भी ठहरेगा? घर में तो बुझा जा रहा है, सुबह होगी तो देख लेना। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, गौरी ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जब तलक सुबह होगी गौरी, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, गोपाल ने उदास लहजे में गौरी की तरफ देखते हुए कहा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने आहिस्ता से कहा। कैसे सब ठीक हो जाएगा गौरी? हम किसानों की तो किस्मत ही खराब है। दिन भर अपना खून पसीना बहाकर खेती करते हैं, जब फसलें तैयार होने को आती हैं तो ऊपर वाले का कहर बरसने लगता है। गोपाल दोबारा चारपाई पर जाकर लेट गया। चारपाई के पास छप्पर से पानी टपक रहा था। गौरी ने बच्चे को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। गोपाल बिस्तर मोड़कर आधे खुले चारपाई पर लेट गया। बिस्तर मोड़ते मोड़ते तकिया की शक्ल अख्तियार कर चुका था। एक कमरा हो, छत वाला हो, गोपाल ने अपने दोनों घुटने पेट में अड़ा लिए और बिदबिदाते हुए कहा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आंधी थमने लगी और ओले पड़ने की आवाज़ भी कम हो गई। मुर्ग की बांग और चिड़ियों की चहचहाट ने सुबह होने का एहसास कराया। वो जल्दी से उठा और धोती मोड़ते हुए तेज तेज कदम उठाता हुआ खेत की तरफ जाने लगा। गोपाल को बाहर जाते हुए देखकर गौरी भी इसके पीछे निकल पड़ी। रास्ते में आम लीची के दरख्त गिरे हुए थे जिससे खेत तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी। गोपाल ने गौरी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। किसी तरह गोपाल और गौरी खेत तक पहुंचे। खेत में फसलों की हालत देखकर गोपाल की आंखों से आंसू बेख्तियार गिरने लगे। खेत में लगे नीम पुख्ता गेहूं की बाली पौधे जमीन पर गिरे हुए थे जो पानी में तर होने की वजह कर उठ नहीं पा रहे थे। बारिश से पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। गोपाल पानी में सने गेहूं की फसलों को देखता और कभी दलहन और तिलहन की फसलात को और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी में सने होने की वजह कर उठ नहीं पाए तो वो मायूस होकर फसलों के बीच बैठकर दोनों हाथ सर पर रखकर रोने लगा। क्या सरकार इसका मुआवजा देगी? इसने फसलों की तरफ इशारा करते हुए गौरी से कहा। गौरी उसे किसी

तरह समझा बुझाकर खेत से घर ले आई। इधर बच्चे माँ को घर में ना पाकर बेतहाशा रो रहे थे। चुप सुबह हुई नहीं कि रे शुरू हो गया, गोपाल ने बच्चों को झिड़कते हुए कहा। इसकी झड़क सुनकर बच्चे और जोर से रोने लगे। बच्चों को क्यों झिड़कते हो जी, इन्हें क्या मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है, गौरी ने गोपाल को समझाते हुए कहा। गौरी, इस वक्त इन लोगों को किसी तरह चुप करा, इसने दांत पीसते हुए कहा। जबकि गोपाल अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लग रही थी। गौरी ने रात की बची बासी रोटी नमक तेल के साथ लपेटकर इसके हाथ में थमा दिया। बच्चे हाथ में रोटी लेकर चुप हो गए। थोड़ा तुम भी कुछ खा पी लो, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने थाली में नमक और प्याज गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कैसे ठीक हो जाएगा गौरी, इसने थाली अपने सामने से हटाते हुए कहा। महाजन का कर्ज सर पर चढ़ा है, हर साल सोचते हैं कि इस बार कर्ज चुका देंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, सूद पर सूद चढ़ा जा रहा है। हम लोगों का किसी तरह खेती बाड़ी करते आधी जिंदगी गुजर गई, अब ये लोग भी बड़े होकर दिन भर खेत में हल चलाएंगे, इसने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो हर फिक्र से बेनियाज होकर आंगन में जमा पानी में कूद रहे थे। गौरी, ए गौरी, गोपाल ने गौरी को हिलाते हुए कहा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। हाँ, गौरी ने आहिस्ता से कहा। गौरी, बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है। कैसा फैसला जी? यही कि अब हमसे खेती बाड़ी ना होगा, अब शहर जाकर कोई काम करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाप दादा सब खेती करते आए हैं और तुम शहर जाओगे, यहाँ का घर दरवाजा कौन देखेगा। देख गौरी, मेरी बात समझ, इस घर की हालत बहुत खस्ता हो गई है, इसका सही से मरम्मत होना जरूरी है। सारा पैसा महाजन का कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाता है, सैलाब की वजह कर हर साल अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए अब शहर जाकर वहीं कमाएंगे, पक्का और खूब ऊंचा घर बनाएंगे, ताकि सैलाब की वजह से हम लोगों को किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। इसकी बात सुनकर गौरी खामोश हो गई, इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शहर जाकर अपना ख्याल रखना। हाँ गौरी, हम अपना ख्याल रखेंगे, बस तुम यहाँ घर दरवाजे और बच्चों का ख्याल रखना। गांव से वो एक पुरानी कमीज पजामा पहनकर और हाथ में पुराना थैला लेकर इसने शहर का रुख किया। शहर आकर उसे एक अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया। घर की हालत को और बेहतर बनाने के लिए वो नाइट ड्यूटी भी करने लगा। शहर आए उसे अभी कुछ महीने गुजरे थे कि आहिस्ता आहिस्ता घर की हालत बदलने लगी। अच्छा खाने पीने से बीवी बच्चे की शक्ल भी निकल गई थी। घर में आयश व आराम के सामान भी आ गए थे और महाजन का कर्ज भी अदा हो गया था। इसने फैसला कर लिया था कि अब गांव का घर बनाने से अच्छा है शहर में एक घर बनाएगा और बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारेगा। हजारों ख्वाब अपनी आँखों में लिए बीवी बच्चों के पास आ रहा था। इसके जिस्म पर आज कीमती लिबास था और ढेर सारे सामानों की पैकिंग थी। वो जल्द अज जल्द बीवी बच्चों के पास पहुंचना चाहता था। ट्रेन से उतरकर इसने टैक्सी ली और ड्राइवर को टैक्सी तेज चलाने की हिदायत दी। जब गांव की सरजमीन पर कदम रखा तो पूरा गांव सैलाब में डूबा हुआ था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें थी, सभी लोग परेशान हाल इधर से उधर जा रहे थे। इस कयामत खेज मंजर को देखकर इसके कदम एक जगह जम गए। वो फर्त हैरत से सबको देख रहा था। कल ही बीवी बच्चों से फोन पर बात हुई थी और आज हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। इसकी बीवी बच्चों का कुछ पता न था। वो परेशान हाल ऊंचे टीले पर खड़ा होकर अपना घर तलाश करने लगा। सैलाब की वजह कर किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। सबकी जबान पर बस यही बात थी कि बांध टूटने के सबब पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही न मिला। दूसरी तरफ कुदरत ने अब्र रहमत को जहमत बनाकर गांव के हजारों अफराद को लुकमा अजल बना लिया। झील का बांध अचानक टूट जाने से दर्जनों मकानात का निशान खत्म हो गया और हजारों मकानात जमीन बोस हो गए थे। फिर से इस गांव के लोगों को जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सैलाब में जो बच गए हैं अपनों से जुदा होने के गम में इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। तो क्या मेरी भी बीवी बच्चे? नहीं नहीं, मेरी बीवी बच्चे जिंदा हैं। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और अपनी बीवी बच्चों के लिए शहर से लाए सामानों पर इसकी नजर जाकर ठहर गई। वो जिंदा हैं और बैग से सभी सामान निकालने लगा। ये लाल साड़ी गौरी के लिए, ये खिलौने मेरे बच्चों के लिए। वो सैलाब में डूब नहीं सकते, वो जिंदा हैं, जिंदा हैं। वो पागलों की तरह बैग से तमाम सामान निकाल रहा था।

0: राजीव गांधी की पैदाइश मुंबई में हुई, जबकि उनकी इब्तदाई तालीम देहरादून के मशहूर जमाना दून स्कूल में हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, तो बाद में इम्पीरियल कॉलेज लंदन भी गए। सामिन, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल आइए वक्त हुआ जाता है अशफाक रसूल के कलाम से महजूज होने का, समात करते हैं कलाम शायर।
1: गजल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। मतलब क्या है, लोग नफ़रत के हलके बनाते रहे, लोग नफ़रत के हलके बनाते रहे, हम मोहब्बत की महफिल सजाते रहे। एक घायल तड़पता रहा राह में, एक घायल तड़पता रहा राह में, शहर वाले निगाहें चुराते रहे। और ख़ास तौर से इस शेर पर तवज्जो चाहूँगा कि अहले दिल सुरखरू हो गए उस जगह, अहले दिल सुरखरू हो गए उस जगह, अक्ल वाले जहाँ मात खाते रहे। अब पत्थरों का हमें खौफ कुछ भी न था, पत्थरों का हमें खौफ कुछ भी न था, आईना हम जहाँ को दिखाते रहे। और आखिर शेर देखिए कि बेखुदी रंग लाई कुछ अशफाक यूं, बेखुदी रंग लाई कुछ अशफाक यूं, उम्र भर हम गज़ल गुनगुनाते रहे। लोग नफ़रत के हलके बनाते रहे, हम मोहब्बत की महफिल सजाते रहे। और दूसरी गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। ये भूल हमारी थी, वो राह दिखा देगा, ये भूल हमारी थी,

और ख़ास तौर से शेर बतवाजा चाहूँगा कि तू अदल की चाहत में किस शहर

वो हुस्न छुपा देगा और ऐब दिखा देगा। और आखिरी शब्द देखिए कि अब दर्द से है बचना अशफा।

सामीन आपको बताएं कि राजीव गांधी को ज़मीन से ज़्यादा आसमान पसंद था। जी हाँ, उन्हें उड़ान भरने का शौक़ था और इसी वजह कर लंदन से लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेकर इंडियन एयरलाइंस में पायलट के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दी। राजीव गांधी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के विज़न की वजह कर और अपनी साफ सुथरी शख्सियत को लेकर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी को अपनी आवाम के लिए वक्फ कर दिया। इसके साथ ही सामीन, वक्त का इशारा है कि हम आपको कहें अलविदा, लेकिन आपकी समातों के हवाले चलते चलते एक खूबसूरत सी गज़ल कर रही हूँ। आइए समात करते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

आमीन। गर्मी अपनी तपिश पर है और ये गर्मी न जाने कितनी बढ़ेगी ये कोई नहीं जानता। तो जब भी शम्स यानी धूप में बाहर निकलें तो कोशिश कीजिए कि अपने छाता स्टॉल वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, साथ ही पानी का बॉटल रखिए क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है और पानी की मकदार को अपने जिस्म में बनाए रखिए। और जो भी खाएं इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि सेहत बहुत अहम है। इस बदलते मौसम में कब कहाँ किसकी तबीयत किस तरह नासाज हो जाए ये कोई नहीं जानता। खाना ऐसा हो कि हमारे जिस्म को वो बर्दाश्त कर सके, यानी कि हमारे जिस्म में वो डाइजेस्ट हो सके, हज़म हो सके आसानी के साथ। अपना और अपनों का रखिए साथ ही खूब सारा ख्याल। और चूँकि अंजुमन कल फिर सजेगी नए गुलों के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी पटना और अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए आज के अंजुमन के साथ ही इजाज़त। रखिए सबका ख्याल और दुआ में सभी को रखिए याद। शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
1: उर्दू प्रोग्राम अंजुमन हम अपने पटना केंद्र से रिले कर रहे थे, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।

लीजिए कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ, समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, फिल्म है तेरे नाम।

लीजिए अब सुनिए फिल्म सड़क का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है और ये आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की हैं।

सनम बेवफा। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जिसे लिखा था सावन कुमार ने, संगीत से संवारा था महेश किशोर ने और इसे गाया था बिपिन सचदेवा ने। और अब लीजिए उदित नारायण का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

और अब लीजिए समीर का लिखा आनंद राज आनंद का संगीतबद्ध किया, विनोद राठौर और अलका याग्निक का गाया, फिल्म बिच्छू का ये गीत सुनिए।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए। अभिजीत और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है। बोल समीर के हैं, संगीत हिमेश रेशमिया का, और फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए।

और अब लीजिए फिल्म जोड़ी नंबर 1 का ये गीत सुनिए। अभिजीत और सुनिधि चौहान ने इस गीत को गाया है, सुधाकर शर्मा ने लिखा है और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

वजह तुम हो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ की आवाज में, कुमार के बोल थे, आनंद राज आनंद का संगीत था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। पहली सभा के कार्यक्रमों में अब हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
0: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को

0: प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर

निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।

0: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ, एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने

0: खाता।
1: क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।

0: गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ।
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
5: चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया।

0: देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
1: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
2: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
6: पेड़ हमारे
7: दोस्त हैं।
6: जीवन में हरियाली लाओ,
7: पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
11: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। अभी ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। 12 बज चुके हैं, अब हम चलते हैं फिल्म संगीत के सफर पर। आइए सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मों के गाने।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ नए फिल्मी नगमे।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को विजेता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों, हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, हम वार्ता भी सुनवाएंगे और आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का आनंद भी लेंगे। तो आइए, अब देर न करते हुए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करें राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की। जी हाँ बहनों, हर साल यानी 21 मई आज के दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि लोगों के दिलों में आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैल सके, शांति, मानवता और एकता का संदेश फैले, युवाओं को हिंसा और चरमपंथी के रास्ते से दूर रखा जा सके, राष्ट्रीय अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाया जा सके। बहनों, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली बार ये दिवस 1992 में मनाया गया। बहनों, ये दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही दुखद भरा दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवादियों के षड्यंत्र के शिकार हो गए थे। तो इसके बाद से ही 1992 से ये दिवस मनाया जाने लगा। बहनों, आतंकवाद आज की दुनिया में एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये वो हिंसक गतिविधि है जिसमें आतंकवादी संगठन या व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को डराने, धमकाने और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद का प्रभाव न केवल देश तक सीमित रहता है, बल्कि ये कई देशों को भी प्रभावित करता है, जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद के कई देशों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता प्रभावित होती है। आतंकवादी हमले से लोगों की जानें जाती हैं, उनकी संपत्ति को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा आतंकवाद के कारण देशों के बीच विश्वास की कमी होती है और वो एक दूसरे के खिलाफ कठोर कदम उठाने लगते हैं। आतंकवादी संगठन अक्सर सीमा पार से संचालित होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर आवाज उठानी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़े कानून बनाने होंगे,

खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से आतंकवाद के मूल कारणों को समझना और उन्हें खत्म करना भी आवश्यक है। बहनों, आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है जिसे केवल एक देश अकेले नहीं सुलझ सकता। इसके लिए सभी देशों को मिलकर शांति, सहिष्णुता और सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालना होगा, ताकि विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा बनी रहे और हमारे देश की आन बान शान बनी रहे, हमारे देश से आतंकवादियों का खात्मा हो जाए। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 1963 में और वही 1971 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों?

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी रेडियो सहेली लालती से सुनते हैं ये वार्ता। विषय है रसोई घर और विज्ञान।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार श्रोता बहनों, आप सुन रहे हैं छोटी मुलाकात अंतर्गत वार्ता और मैं हूं आपकी रेडियो शखी लालती। प्यारी बहनों, आज हम जिस विषय पर आपसे बातें कर रहे हैं उसका शीर्षक है रसोई घर और विज्ञान। श्रोताओं, रसोई घर केवल भोजन बनाने का स्थान ही नहीं बल्कि यह विज्ञान का एक छोटा प्रयोगशाला भी है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अनेक वैज्ञानिक प्रक्रियाएं रसोई घर में ही घटित होती हैं। भोजन पकाने से लेकर उसे सुरक्षित रखने तक हर कार्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। बहनों, सबसे पहले खाना पकाने की प्रक्रिया ही विज्ञान का एक अच्छा उदाहरण है। जब हम दाल या सब्जी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा के प्रभाव से उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे भोजन नरम, स्वादिष्ट और सुपाच्य बन जाता है। इसी प्रकार दूध को उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। बहनों, रसोई घर में संरक्षण का विज्ञान भी देखने को मिलता है। फ्रिज में भोजन रखने से कम तापमान के कारण बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है जिससे खाना अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। अचार में नमक और तेल का प्रयोग भी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। बहनों, इसके अलावा रसोई घर में उपयोग होने वाली कई उपकरण भी विज्ञान की ही देन है, जैसे प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव ओवन, गैस स्टोव और मिक्सचर ग्राइंडर। प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ने से पानी का उबलने का तापमान बढ़ जाता है जिससे भोजन जल्दी पकता है और समय व ऊर्जा की बचत होती है। तो बहनों, रसोई घर विज्ञान का जीवंत उदाहरण है जहां हर दिन अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यदि हम इन सिद्धांतों को समझें तो न केवल भोजन बेहतर बना सकते हैं बल्कि समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो बहनों, आज यहीं तक, फिर अगले मुलाकात में हम आपसे बातें करेंगे। नमस्कार।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आइए बात करते हैं चाय की, तो जाने चाय के रोचक इतिहास को। तो बहनों, चीनी लोक कथाओं के अनुसार चाय का इतिहास लगभग 2737 ईसा पूर्व में शुरू हुआ जब कुशल शासक और वैज्ञानिक सम्राट शेन नोंग ने चाय की खोज की। हुआयूं के बगीचे में पानी उबालते समय एक जंगली चाय के पेड़ की एक पत्ती बहकर उनके बर्तन में गिर गई। उन्होंने उसे पिया तो वो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने उस पौधे पर और शोध करने का निश्चय किया। कुछ लोक कथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्राट ने अपने शोध के दौरान चाय के औषधीय गुणों की खोज की। बहनों, इस तरह की और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो चाय को लेकर फैली हैं।

चाय का सेवन व्यापक रूप से तब तक नहीं फैला था जब तक कि तांग राजवंश का काल नहीं आया, जिसे अक्सर चाय का शास्त्रीय युग कहा जाता है। सरकार द्वारा लगाया गया चाय कर इस पेय पदार्थ की बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा प्रमाण है और इसी समय चाय को चीन के राष्ट्रीय पेय के रूप में मान्यता मिली। बेनो चाय को प्रसिद्धि हर जगह मिली, जैसे चीन, जापान, यूरोप और पूर्व के बीच यात्रा करने वाले व्यापारी भी चाय के महत्व को समझने लगे। हालांकि चाय पश्चिमी देशों में 17वीं शताब्दी तक स्थायी रूप से प्रचलित नहीं हुई थी, पर चाय की लोकप्रियता तेजी से स्टारडम्स, पेरिस और लंदन जैसे शहरों में फैल गई। उस समय चाय पीना एक नई बात थी। धीरे धीरे चाय का चलन महिलाओं में भी बढ़ा, जो इसे एक सभ्य पेय मानती थी। 1657 में इंग्लैंड में चाय बेचने वाली पहली दुकान खुली, जिसे थॉमस गेरावे चलाते थे। इस दुकान में डचों द्वारा आयोजित चाय बेची जाती थी। इसने लंदन के कैफे और कॉफ़ी हाउसों में चाय की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया। बहनों, धीरे धीरे भारत में भी चाय का प्रचार प्रसार होने लगा। कंपनी के प्रभुत्व के बावजूद 1800 के दशक के मध्य तक पश्चिमी देशों की चाय की मांग के लिए चीन ही मुख्य स्रोत बना रहा। लगभग चाय 1823 में ब्रिटिश सेना के मेजर रॉबर्ट ब्रूस को भारत के असम के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखी जाए सकने वाली चाय की झाड़ियाँ मिली। चाय की इस खोज के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल असम में बल्कि हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तर पूर्वी भारत के दार्जिलिंग के बीच वुड स्थित अपने बगीचे में दार्जिलिंग चाय के बीज बोए। ये रोपण इतना सफल रहा कि 1847 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चाय बागान का विकास शुरू किया। इसने भारत में एक नए फलते फूलते चाय उद्योग की शुरुआत की और चीन में उगाई जाने वाली चाय पर निर्भरता लोगों का समाप्त हो गया। और आज वर्तमान समय में हम चाय पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इसके बिना सुबह आँख नहीं खुलती, आलस दूर नहीं होता, शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होती। बहनों, आज पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका है। यदि मेहमान का स्वागत करना हो, कोई खुशी की बात हो, किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप कर रही हो, तो ऐसे में चाय को प्राथमिकता दी जाती है। और जहाँ तक खुशी की बात हो, तो अगर घर में कुछ भी नहीं होता तो लोग चाय को ज़रूर आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, चलो भाई चाय से मुंह मीठा करते हैं। तो आइए बहनों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें और सुने ये गीत।

बहनों, हर दिन कुछ खास अंक में आइए जाने त्वचा के लिए, त्वचा को चमकदार बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। तो एलोवेरा के गूदे से चेहरे की मसाज करें, चेहरा नरम मुलायम बना रहेगा। दही, बेसन, नींबू, हल्दी पाउडर डालकर चेहरे पर लेप लगाकर थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें, फिर इसे ठंडे पानी से धो लें, चेहरा चमकदार बना रहेगा। तो ये था बहनों हमारा आज का सौंदर्य टिप्स। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई टिप्स है जो आप हमारे जरिए अन्य श्रोता बहनों तक पहुंचा सकती हैं, तो आप हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे एक नया विषय, नया जोश, नई उमंग, नई खुशी के साथ। तब तक के लिए दीजिए नारी संसार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। इस केंद्र को आप सुनते हैं मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी हम उपलब्ध हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। इस केंद्र को आप सुनते हैं मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारे सभी कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल सेट पर इस ऐप के माध्यम से। हमारे सभी कार्यक्रमों के साथ हमारे अन्य केंद्रों के भी कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। फिलहाल हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में हिंदी समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों

और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:10 से। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र मेहता को। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:15 से। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:00, प्रसारण हमारे पटना केंद्र से होगा। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे 2:05 से। रोजगार सूचना आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 से। दोपहर समाचार का प्रसारण होगा 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। फिल्म संगीत का पुनः आनंद आप लेंगे 2:30 से। लोकगीत का समय होगा 3:00। ये सभी पहली सभा के कार्यक्रम थे। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। संध्या 5:00 समय होगा तरुण कुसुम का, चर्चा सुनेंगे आप शांति सद्भाव और युवा। 5:40 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत। हिंदी समाचार का प्रसारण 6:00 में होगा और विद्यापति गीत आप सुन पाएंगे 6:10 से। मैथिली संवाद पटना केंद्र से प्रसारित, प्रसारण समय होगा 6:25। गांव घर का समय होता है 6:30। आज सुनेंगे कार्यक्रम जागरूक गांव। इसके अंतर्गत चर्चा सुनेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस और यातायात के नियम का पालन करें। साथ ही साथ खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जीवाणु खाद का महत्व एवं प्रयोग और समसामयिक कृषि चर्चा। प्रादेशिक समाचार दूसरी सभा में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 से। 7:47 समय होगा जिले की हलचल का। फिल्म संगीत 7:52 से और 8:15 का समय होगा सिंगरहार का।

9:30। ये समय होगा फिल्म संगीत का, जब आप आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। 10:00 लोकगीत और पुनः 10:30 से आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब सुनिए देशभक्ति गीत। फिल्म शहीद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे मोहम्मद रफी और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी।

0: एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण के विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: मुकेश और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फर्ज में। अगला गाना सुनिए फिल्म नमक हलाल से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना, ना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में। नीरज का लिखा ये गीत है शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

गर्दिश, यह है इस फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं। आशा भोसले की आवाज़ है, जावेद अख्तर के शब्द हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया राहुल देव वर्मन ने, यानी आरडी बर्मन का संगीत, जावेद अख्तर के शब्द

कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं रवि का लिखा ये गीत साहिर, क्षमा करेंगे, रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वक्त।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई है। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। इधर लोकभवन ने 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 24 मई को होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। आयोग के अनुसार केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। काल बैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। इधर दक्षिण बिहार के अधिक

0: उत्तर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और उमस के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुपौल जिले के बीरपुर में सैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंग बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मधुबनी जिले के खजौली रेलवे स्टेशन के करीब जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में ट्रैक पर गिरी एक मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन के चालक की सूझबूझ के कारण हादसा होने से बच गया। रेल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीटा, गूगल और टेलीग्राम समेत अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुकाबला जाति इम्तहान से मुतल्लिक गलत इतलात की बढ़ती तशहीर पर तशवीश जाहिर की गई। ये मीटिंग 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तहान से कबल काफ़ी अहम समझी जा रही है। एक दीगर मीटिंग में वजीर तालीम ने नीट यूजी दोबारा इम्तहान के गैर जानबदाराना और बेहतर इनाकात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। मगध यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को फौरी असर से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर लोक भवन ने 6 यूनिवर्सिटियों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में तकरीरी के लिए 20 जून तक दरखास्तें तलब की हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 24 मई को होने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तहान के लिए 3 नए मराकज शुरू किए हैं। कमीशन के मुताबिक सेंटरों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में इम्तहानात मराकज कायम किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मुल्क में सेंटरों की कुल तादाद 83 हो गई है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ये यकीनी बनाया जा रहा है कि माजूर उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा इम्तहान मराकज अलाट किए जाएं। इस साल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तहान 2026 के लिए कुल 8,19,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मुल्क आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस दिन साल 1991 में साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दों की साजिश का शिकार हो गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया है। पटना वाकई कांग्रेस सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में मुनक्किद ताजियती जलसे में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने साबिक वजीर आजम के मुजस्मे पर गुलपोशी की। आज का दिन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद की सकाफत से दूर करना है। इस मौके पर हलफ बरदारी तकरीब समेत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हमारे औरंगाबाद नामानिगार ने बताया कि कलेक्ट्रेट में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने दहशतगर्दी और तशद्दुद का डटकर मुकाबला करने का हलफ लिया। कल बैसाखी के असर से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत रियासत के शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर आंधी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न रहें। इधर जनूबी बिहार के बेशतर हिस्सों में शिद्दत की गर्मी का कहर जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल समेत रियासत के जनूब मशरक और जनूब वस्त इलाकों में बेशतर मकामात पर लू की सूरत हाल कायम है। पटना और उसके नवाही इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और उमस के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आपके मोबाइल हैंडसेट पर भी हम उपलब्ध हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा अभी आप सुन रहे हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का

0: अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
1: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: India has recently launched...
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
4: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32

0: हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में चार महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के

0: नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म चल मेरे भाई के इस गीत से, जिसे युगल स्वर दिया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। शब्द रचना समीर की है, संगीत रचना आनंद मिलिंद की।

ये गीत आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजी थी। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत था, संगीत था अनु मलिक का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए लोकगीत।

लोक गीत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना शारदा सिन्हा, अरविंद कुमार झा, कुमारी कल्याणी और सहेलियों को। मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाश

0: वाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।
1: मिल जाना तो बस ऐसा लगता कि

0: हो रहा है।
1: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े
0: हाँ
1: अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना
0: अगर
1: वो वर्ल्ड फेमस है।
0: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी,
1: हाँ?
0: अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
1: जी
0: आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
1: भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
0: सच में बहुत ज्यादा।
1: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
0: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
1: हाँ
0: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
1: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए
0: हाँ।
1: मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
0: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब का हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तोहफा हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदल क्यों हो गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त

0: सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला
1: हाँ,
0: है।
1: मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा,
0: क्या बात है
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी हरी चाय जिसे कहते हैं उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना, मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है।
1: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम

0: की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षुता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई

0: वह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते ही अंधेरा होते ही लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की,
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़े, घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन ले गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए

0: श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए और ये सखी सहेली में खास कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपकी कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से, सुन रहे हैं रेडियो को।
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगी कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तंजना में फिर तेरी कहानी आ गई, काले बोल ने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है, तो आजकल तो पक्के की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्के लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त तब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देते हैं आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: देते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है, राजस्थान के लोग हैं हम तो गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी
1: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: थोड़े साइड भकर रुक कर तकर बाद गप केला के बाद गाड़ी के बढ़ेबा के चाही। खास कर मैसेज भेल चाहे मोबाइल पर गप भेल ई सब नहीं करवा के चाही। हेमलेट आ सीट बेल्ट दुपहिया वाहन चलबे समय हमेशा नीक गुणवत्ता वाला जे ISI मार्क वाला हेमलेट होयत अछि ओकरा पहिरबा के चाही। कार चलबे समय ड्राइविंग ड्राइवर के बगल में बैठल जे यात्री होयत अछि ओहो सीट बेल्ट के अवश्य लगेबा के चाही।
1: दुपहिया वाहन में हेलमेट चला पहन ली निश्चित रूप से। देखियो लोग के मन में भ्रम की हो छे ने ऐ में किछ लोग के भ्रम छे पहिने तो अपन सुरक्षा प्रशासन से बचबाक लेल लोग हेलमेट के सेवन करे छे बेसी लोग के मन में ही हो छे। किछ गोटे जे नवतुरिया छे ओ फैशन में जे हम जे हेलमेट लगा के चलब तो हमर प्रतिष्ठा पर आँच आब जाए हमर प्रतिष्ठा घट जाए मान घट जाए तो यह क्रम में वो अपन माथ में हेलमेट नहीं लग तो सबसे पहल गप सतो भाई कह दिया प्रशासन बाद में पहने अपन जान के सुरक्षा करू किए एक बेर जे जान चली जाए छे वो घूर के नहीं अब तैं यातायात के नियम समाज में सुरक्षित आ सुव्यवस्थित आवागमन के लेल आवश्यक है। सड़क पर चलवा काल में यातायात के जे संकेत ओकर पालन करब गति सीमा के ध्यान रखब माथ में हेलमेट आ जो चरपहिया चला रहल छी तो सीट बेल्टक प्रयोग तो निश्चित रूप से कर सड़क पर जे पैदल चलय वाला लोग स्कूल के जे बच्चा सब छे खास कर धियापुता तो बेसी बुजनुक नहीं हुई छे तो हुनको जान बचाबी अपनो जान बचाबी
0: सिग्नल के पालन करवा के चाहिए।
1: लाल पियर हरियर
0: बत्ती जे होते छे
1: बत्ती जे होइए इस सबक संकेत होइए लाल रुक जाओ पियर तैयारी क लिए व दिन में आहा जा सके छी हरियर मतलब आहा
0: जा सके छी छै है त ई सब संदेश जे छ से देर रहत छ संगे बाया मुड़ा काल में देखत हेबे जे लाइन पार रहत छ दाया से बाया जा के लेल त देख लेबा के चाही आगा पीछा दुनू तरफ गाड़ी के देख लेबा के चाही तखन गाड़ी मुड़ेबा के चाही। ई नै जे एक बैग अइ रोड से ओ रोड में क्रॉस क जाय एहन नै करबा के चाही। खास क के हाईवे जे होइत छ ओइ में गति सीमा ज्यादा रहत छ गाड़ी के तेज तो एहि पर विशेष ध्यान रखबा के चाही। खास क के धियापुता जे स्कूल जाय छथि उनका ध्यान रखबा के चाही जे अपन दाया बाया के ध्यान राखि कऽ रोड पर चलबा के चाही। संगे साइकिल के धीरे से चलाबी आर स्कूल जाय काल आबैत काल विशेष ध्यान राखि कऽ साइकिल के चलेबा के चाही की
1: निश्चित रूप से सतर्क रही सकांच रही सड़क पर चलवा काल में लोग के देखब जे जत सड़क नहीं पार कर अरवैध के ओहिठाम पार करता
0: छे।
1: संगे संग इहो देखब जे आब जे राष्ट्रीय राजमार्ग सब बन रहल है ये तो बड़ बेसी ऊंचे तो गाम से जे निकलो वाला सड़क है तो इसे लिया रही है तो लिया से ऊपर चढ़ काल में स्वाभाविक रूप से लोग गति सीमा गाड़ी के बढ़वे मुदा जखने अहाँ सड़क पर अबे तो ठहर जाओ पहिने बामा फिर दहिना देख लिया जे किमरो से गाड़ी तो नहीं आबि रहल है कोनो जीव जंतु तो नहीं आबि रहल है ओकर बाद पार करक चाहिए। एहन नहीं हुए जे सड़क पर पहिने से चल रहल छी तो हुनकर गति तो अहाँक गति से बेसी रहे तो एकर पालन करब आवश्यक है।
0: अब वाहन के सड़क के किनार में कत्तू नहीं खड़ा कर देबाक चाहिए सुरक्षित जे ओकर पार्क होत अछि ओहि में गाड़ी के अथी रखबा के चाही तकर बाद कतो जेबा के चाही। ई नै ओहिसँ की होइत अछि जे रोड एक तरफ जाम भऽ जाइत अछि आ दोसर तरफ सड़क कम बचैत अछि ओहेमे गाड़ी मे एक दोसर के आगा पीछा करऽमे से अहाँके ठोकर लागि जाइत अछि गाड़ी में गाड़ी टकरा जाइत अछि तऽ ई नै हेबाक चाही। गाड़ी के कखनो रोड के किनार मे नै लगा देबाक चाही आ कतौ चल जेबाक चाही। ई सब पर विशेष ध्यान रखबाक चाही जतौ पार्किंग के व्यवस्था अछि ओतय।

0: गाड़ी हमरा लोकन के लगेबाक चाहिए कि अनिल भाई
1: एहने सन स्थिति देख को कलाकार छथि जे बटोही के कही छथिन के ठहर जाओ ने रुक जाओ ने तो सुनी एहने भाव ल क ई कलाकार छथि अरविंद कुमार झा गीत सुना रहल छथि सुनी
0: सुनल छथि

हाँ, तो अपने सब करे छलहुँ हैं यातायात नियमके पालन पर गप, तऽ लाइन अनुशासन आओर ओवरटेक ई पर ध्यान रखबाक चाही। जे लाइन देल गेल अछि अहाँके वएह लाइनमे गाड़ीके चलेबाक चाही आ हरदम सड़कके बाएँ ओर जे चलयवला जे आवश्यक गाड़ी अछि ओ चलैत अछि, ओकर दायाँ ओर दोसर गाड़ी चलैत अछि, फेर

0: ओहिसँ अलग साइकिलके रहैत अछि, मोटरसाइकिलके रहैत अछि, तऽ सुरक्षित रूपसँ चलेबाक चाही। ई नहि जे एक दोसरके ओवरटेक करबाक चाही। ओवरटेक करबासँ ई होइत अछि जे कखनो खतराके बेसी सम्भावना बढ़ि जाइत अछि, कखनो कालके एक दोसर गाड़ीमे टक्कर हुअके सम्भावना बढ़ि जाइत अछि, सङ्गे एक दोसरके जानके खतरा सेहो बनि जाइत अछि। सड़क चिन्हके सङ्केत सेहो ध्यान रखबाक चाही। सड़कपर जेबासँ पहिने क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग जे होइत अछि, जतऽ कि नो पार्किंग लिखल अछि, ओहन सङ्केतपर हमेशा ध्यान देबाक चाही। कागजातमे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनके रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, बीमा हमेशा अपना साथमे रखबाक चाही। यदि भारतमे मोटर वाहन अधिनियमके अनुसार अहाँके ई सब कागजात नहि अछि तऽ पुलिस द्वारा जे अछि पकड़ायल गेलापर अहाँके कार्रवाई सेहो कयल जा सकैत अछि।
1: देखियौ, सबसँ नमहर गप की होइ छै, पहिनेसँ आब हरेक गाममे अहाँ देखब जे आवागमनके सुविधा जे छै से बढ़ि गेलै। एहिसँ लाभ ई भेलै जे एनाइ गेनाइके एक दोसरसँ सुगमता भऽ गेल, आसानी भऽ गेल। मुदा दोसर दिस की होइए जे आब ओकर लोग उपयोग जे छै से अपन वाहनके गति सीमा बढ़ा देलकै। अहाँ देखब सत्तो भाई, जे 8 चक्का 10 चक्काके गाड़ी रहैए ने, ओकरा आगामे लिखल रहै छै 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट
0: प्रति घंटा।
1: नहीं मतलब जे एकदम संतुलित गाड़ी है, ओकरा जतय इच्छा हेतै ओहिठाम ठाड़ कऽ सकै छी। तऽ ओहन गाड़ीके अधिकतम जे गति सीमा अछि से 40 किलोमीटर प्रति घंटाक रफ्तारसँ निर्धारित कयल गेल। आ जे दुपहिया वाहन चलबै छी सामान्य वर्गक लोक बेसी, ओ अहाँके शरीरसँ बैलेंस होइए, अहाँके शरीरसँ अनबैलेंस होइए, तऽ माने कहि सकै छी ओकर संतुलन शून्य होइए। तऽ एकरा गति सीमा देखब जे नव आयु वर्गक धियापुता छै जे बैसता तऽ लगली ओकरा जे छै से 40-50 पर उड़बऽ लगै छै। तऽ ई ध्यान राखी जे जान सँ बढ़ि कऽ किछु नहि अछि, अपनो सुरक्षित रही, सड़क पर जे चलऽ वला छथि हुनको सुरक्षित राखी।
0: छै हरदम सड़क पर निर्धारित गति सीमा जे लिखल गेल रहैत अछि ओहिसँ तेज गतिमे गाड़ीके नहि चलेबाक चाही, एहिसँ खतरा बढ़ि जाइत अछि, अपन तऽ खतरा होइत अछि, सङ्गे दोसरके खतरा सेहो हमरा लोकनि बढ़ा दै छी। आओर ट्रैफिक सिग्नलके पालन अवश्य करबाक चाही। जतऽ देखबै जे ट्रैफिक पुलिस अछि ओतऽ तऽ अहाँके गाड़ी हमरा लोकनि धीरे लऽ जाइ छी, फेर ओहिके बाद तेज चलबऽ लागै छी, तऽ ई नहि हेबाक चाही। लाल बत्ती यदि देल गेल अछि तऽ रुकि जेबाक चाही, सङ्गे जखन ग्रीन बत्ती हुए हरा बत्ती तकर बादे हमरा लोकनि सुरक्षित आगाँ गाड़ीके बढ़ेबाक चाही। ई नहि जे एक दोसर लाइनमे ओवरटेक कऽ कऽ पूरा रोडके जाम कऽ दी। एहिसँ की होइत अछि जे गाड़ीके वाहन जे अछि से देखबै जे कतारमे एक लाइनसँ पूरा रोड जाम कऽ दैत अछि, ओ जाम छुटबामे 2-3 घंटा लागि जाइत अछि आ यात्री लोकनि परेशान भऽ जाइ छथि। तऽ एहन नहि हेबाक चाही जे एक दोसर लाइनमे हमरा लोकनि एहि लाइनसँ ओहि लाइनमे गाड़ीके घुसा देलहुँ, ओहि लाइनसँ फेर तेसर लाइनमे घुसा देलहुँ, तऽ एहिसँ विशेष जाम भऽ जाइत अछि।
1: नहि यौ सत्तो भाई, अहाँ देखब जे राष्ट्रीय राजमार्ग जे ओ तऽ बड़ सुंदर निर्माण कयल गेल अछि, तऽ आ संगे संग ओहिमे इहो व्यवस्था छै जे एक तरफसँ जेबाक लेल व्यवस्था अछि तऽ दोसर दिशसँ घुरबाक लेल व्यवस्था अछि। तऽ अहाँ जँ नियंत्रित रूपसँ अपन वाहनके नहि चलबै छी तऽ देखब जे पाछूसँ जे कोनो द्रुत गतिसँ आबि रहल छी तऽ एहनो दुर्घटना सड़क पर होइए जे अहाँके गति गड़बड़ेलाके कारण पाछू वाला लोकके दिक्कत होइ छै जाहिसँ दुर्घटना घटै छै।
0: यातायात नियमके पालन करबाक लेल कानूनी रूपसँ अनिवार्य अछि, बल्कि एकर सड़क पर चलेबाक लेल अन्य लोकके सुरक्षित रखबाक लेल ई नियम बनायल गेल अछि। सरकार दिससँ

0: पर बहुत रास खर्चा कयल जाइत अछि, खास कऽ कऽ जे राजमार्ग नहि अछि, फोर लाइन नहि अछि, जतऽ सिंगल सड़क अछि ओहिमे विशेष जाम, जतऽ सिंगल लाइन अछि ओतऽ विशेष जाम भऽ जाइत अछि। ओतऽ देखबै जे बहुत रास गाड़ी एक दोसर लाइनमे ओवरटेक कऽ कऽ घुसा दैत अछि।
1: देखियौ, जँ व्यवस्थित रूपसँ धैर्यके सङ्ग अहाँ सड़क पर चलबै ने, ई गपके तऽ मानऽ पड़त कि जाहि हिसाबसँ जनसंख्या बढ़ि रहल अछि, सड़कके संख्या सेहो बढ़ल अछि, मुदा एखनो खास कऽ देखब जखन धियापुताके विद्यालयके समय होइ छै, जे कार्यालय जेबाक समय अछि, तऽ ओहि कालमे सड़क पर दबाव रहै छै, तऽ क्षणिक लाभके लेल बामासँ गाड़ीके दहिना आ दहिनासँ बामा देखब जे अनेरे लोक करै छै। शहरके किछु ठाम एहनो जगह अछि जे अहाँके जेबाके अइ 2 किलोमीटर आ समय लागि जायत अहाँ देखबै जे 40 मिनट 50 मिनट, तऽ क्षणिक धैर्यके सङ्ग नहि रहलहुँ तऽ अपने तऽ अहाँ आगू बढ़लियै, लेकिन आबयवला जे लोक उमरसँ छथि हुनकर मार्गके अवरुद्ध कऽ देलियै।
0: आ खास कऽ कऽ जे रोगी छथि, जे बीमार छथि, एम्बुलेंस जा रहल अछि ओ फँसि जाइत अछि कखनो कालके, बहुत या अथी बीमार व्यक्तिके जान चलि जाइ छनि, तऽ ई नहि हेबाक चाही। कखनो सड़कके जाम नहि करबाक चाही, एहिपर विशेष ख्याल हमरा लोकनिके रखबाक चाही।
1: सतवाई एहि सङ्ग आब आजुक जागरूक गाम कार्यक्रमके समय सम्पन्न हेबा पाई। खेती गृहस्थी कार्यक्रममे अन्नदाता बंधु लोकनिके, किसान भाई लोकनिके स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार।
0: हमरो दिशसँ बहुत बहुत नमस्कार किसान भाईके। अनिल भाई, आइ हमरा लोकनि गप करब जीवाणु खाद के प्रयोग एवं महत्व के संबंध में।
1: देखियौ सत्तो भाई, बड़ा सुंदर गप कह रहल छी अहाँ। खाद, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, मोन पड़ैए जे बाबा कहैत रहथिन जे हमसब खेतमे कोनो खाद नहि दैत रही आ उपजा भऽ जाइत रहै। आब की भऽ रहल अइ कि जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ि रहल अइ, खेतक रकबा छोट भऽ रहल अछि
0: नहि,
1: आब जाहि ठाम अकाय बन छल, जंगल झाड़ छल, ओ कटि गेल, खेत बनि गेल, आ जतऽ खेत छल ओहिठाम जे छै से आब घर बनि रहल
0: छै।
1: जतऽ पहिनेसँ घर अइ तऽ घर पर घर बनि रहल। एक दिन अपने गामक गप कहै छी कि एकटा ट्रैक्टर वाला माटि लऽ कऽ अबैत रहै उम्हरसँ, तऽ हम पुछलियै ओ कतऽ जाइ छी, तऽ ओ कहलनि कि की कहै छी मालिक, कि जे खेतसँ पहिने माटि काटैत रहिए आब लोक कहै छथिन ओकरे भर
0: छै।
1: कहबाक तात्पर्य ई जे बाध बन छल ओहिठाम घर बनि रहल अइ, तऽ खेतक रकबा जे छोट भऽ गेल, जनसंख्या बढ़ि रहल, एहन सन विषम परिस्थितिमे जे बाँचल खेत अइ ओहिसँ बेसी उपजा लेबाक क्रममे की होइ छै जे अनर्गल रूपे रासायनिक खाद उर्वरकके व्यवहार
0: करै छै।
1: देखियौ अहाँ गौर करबै, आइसँ 15-20 वर्ष पहिने की होइ छल जे एहि विशाल जनसंख्याके भरण पोषणके लेल सरकार, हम अहाँ सब गोटे चिंताग्रस्त छलहुँ जे कोना उदर पूर्ति हेतै, केना सब गोटेके, तऽ एहि लेल अनेक तरहक उपाय कयल गेल, हरित क्रांति आयल, तऽ देखियौ बहुत रास क्षेत्रमे हमसब आत्मनिर्भर भऽ गेलहुँ, जेना दलहनके क्षेत्रमे, दूध उत्पादनके क्षेत्रमे हमसब नीक स्थितिमे छी, अन्नमे सेहो नीक स्थितिमे छी, तीमन तरकारीमे सेहो नीक छी, मुदा फसिलके गुणवत्ता खराब भऽ रहल अछि। एकरे कारण हम अहाँ रोगी भऽ रहल छी, तऽ फसिलके गुणवत्ता बनल रहे तैं जैविक खेती, जीवाणु खादक व्यवहार करब अनिवार्य भऽ गेल अछि। आब कहियो की कहैत रहिए
0: अनिल भाई, जीवाणु खाद, जैव उर्वरक, पर्यावरण अनुकूल सूक्ष्म जीवी जे मिश्रण होइत अछि, जे मृदाके प्राकृतिक रूपसँ पोषक तत्व उपलब्ध करबैत अछि, घुलनशील तत्वके पौधके लेल उपयोगी बनबैत अछि।

0: अछि आ फसल के पैदावार में 10-20% दर वृद्धि करैत अछि। ई जीवाणु खाद विभिन्न प्रकार के जे फसल अछि जेना माटि के जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीवाणु खाद के प्रयोग कयल जाइत अछि। राइजोबियम जेना भेल एकर उपयोग दलहनी फसल जेना कि चना भेल, मटर भेल, मौसरी भेल, सोयाबीन भेल, मूंगफली भेल में होइत अछि। ई जड़ि में ग्रंथिका बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन के एकत्रित करैत अछि आ माटि में स्थिर होइत अछि जाहिसँ विशेष अहाँके दलहनी फसल उपजैत अछि। एजिटो बैक्टर अछि, ई स्वतंत्र रूपसँ माटि में रहैत अछि, नाइट्रोजन स्थिर करैत अछि। एकर प्रयोगसँ गहूँम, कपास, कुसियार, सब्जी वाला जे फसल अछि ओहिमे कयल जाइत अछि।
1: देखियौ जीवाणु खादक व्यवहार जँ सकांक्ष भऽ कऽ जानकारी लऽ कऽ सतर्क भऽ कऽ करै छी ने तऽ निश्चित रूपसँ लाभे लाभ होइत। तऽ जीवाणु खादक सन्दर्भमे विस्तारसँ गप करब, मुदा अपन सभक मिथिलाञ्चलमे या बहुत रास प्रान्तमे एक साँझ रोटी तऽ एक साँझ भात चाहबे करै, बिना भातक गुजारा नहि। आ भात केना भेटतै जाधरि धान नहि रोपबै ने तऽ धानक फसिल नहि हेतै तऽ भात कोना हेतै। तऽ एहने सन गीत सुना रहल छथि कलाकार पूनम कुमारी, तऽ सुनी हमसब ई सुन्दर सन गीत
0: सुनल जाय।

0: धनिया
1: सुंदर
0: धनिया चलन रोपनिया ई पूनम कुमारी के गाओल गीत सुने छलहुँ हैं और बहुत निक गीत छल। आब किसान भाई के एकटा भेंट वार्ता सेहो अन्ने छियै।
1: आब ई बुझना जा रहल है सतो भाई जे भातक जोगार भ गेल अहाँके ने, मुदा आमक महीना में बिना आम के एको साँझ भोजन नहीं चले छै। ओना एखन एक हफ्ता दस दिन देरी है, बाहर वाला आम सब आब गेल है। आम के फल के राजा कहल गेल है। आ जे आम लागल है टिकला है अखन पाकल नहीं है, तो ओकरो देखभाल रक्षा करब जरूरी छे ने, क्योंकि वह काल पकते निक जका पाकत तो हमरा अहाँ के भेटत। तो लागल जे फसिल है आम के ओकर देखभाल कोना करी, एने विषय से संबंधित एकटा सकांश किसान छै जे सतर्कीक संग अपन गाछीक देखभाल करै छै, ओ किसान छै
0: आदित्य कुमार ठाकुर।
1: हुनका संग गप कर रहल छै शांतनु कुमार मिश्र। तो दुनू गोटे के बीच जे गप भ रहल है जे आमक गाछी के कोना देखभाल करी, फसिल के कोना देखभाल करी, सुनी हमहू सब कनी।
0: सुनल जा,
2: आम हमरा सबके देश के महत्वपूर्ण फसल है, अपना सबके भूमि पर बेहतर स्वाद पोषण तत्व के लेल विख्यात है। आम के भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाएल जात है। ये लोकप्रियता के संग संग बहुत रास पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो मनुख के लेल संबंधी आवश्यक पूरा करते हैं। आम के फसल के कीटनाशी और कीट व्याधि से बचाव के लेल प्राप्त कैल जाए, अय के लेल हमरा संग आदित्य कुमार ठाकुर छथि गप करबा के लेल, तो इनका से सुनल जाए।
3: आमक फसल के रोकक के लेल महत्वपूर्ण सुझाव, आम के फसल को रोकने के लिए कीटों से रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है। पहला, कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। समय समय पर पौधों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए तथा रोगी या कीट के प्रकोपित टहनी को काट कर निकाल देना चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करें ताकि तेज धूप से मृदा में छिपे कीट नष्ट हो जाए। खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कीटों का प्रकोप होने पर क्रांतिक स्तर पर उसका उचित एवं जैविक विधि से नियंत्रण करना चाहिए। कभी भी कीटनाशकों का प्रयोग फूल खिलते समय नहीं करना चाहिए, इससे फल का उचित विकास नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ परागण कीट भी मर जाते हैं, इससे परागण न होने से उत्पाद भी घट जाता है। फसल को उचित समय पर हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। दीमक कीट से बचाने के लिए, यह मृदा के अंदर जीवन यापन करने वाला कीट है, यह दीमक जड़ को खाता है। इसकी रोकथाम के लिए 10 ग्राम प्रति लीटर ब्यूबेरिया बेसियाना के घोल का छिड़काव करें या तना को मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर से ड्रेंच करें। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तने के चारों ओर 25 सेंटीमीटर चौड़ी 400 गज पॉलीथीन की पट्टी जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई से बांध देनी चाहिए। फल मक्खी, इस कीट की मादा फलों की परिपक्व अवस्था में फलों के अंदर अंडे देती है। अंडे से मैगट निकलकर गूदे को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद फल जमीन पर गिर जाते हैं जो कि खाने के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। इसका प्रबंधन के लिए, इसकी रोकथाम के लिए फेरोमोन का घोल मिथाइल यूजेनॉल 0.8% एवं मेलाथियन 0.08% के साथ बनाकर डिब्बे में भरकर पेड़ों पर टांग देने से नर मक्खियां आकर्षित होकर मेलाथियन द्वारा नष्ट कर दी जाती है। 1 एकड़ बाग के लिए 4 ट्रैप लगाने चाहिए। तना छेदक कीट, इस कीट की इल्लियां पौधों के तने के अंदर ही अंदर घुसकर खाती रहती है और अनियमित सुरंग बनाती रहती है। इससे पौधा आंशिक या पूर्ण रूप से सूख जाता है। यह कीट तनों पर बुने हुए जालों में फंसे उनके मल की मौजूदगी से पहचाना जाता है। इससे प्रबंधन का तरीका है, प्रभावित पौधों के छेदों को किसी पतले तार से साफ कर उनमें डाइक्लोरोबास की 2-3 मिलीमीटर पर लीटर मात्रा पानी में घोलकर छेद में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है, कार्बोफ्यूरॉन 3G 5 ग्राम पर छेद।

0: से बंद कर देते हैं। इसका दशा में प्ररोह और बौर सूख जाते हैं तथा प्रारंभिक अवस्था में फल भी सूख जाते हैं। गुठली का घून, इस कीट की मादा फलों के अंदर अंडे देती है। इससे ग्रब निकलकर गुठली में प्रवेश करके गुठली को खाकर नष्ट कर देते हैं और फल गिर जाते हैं। गिरे हुए फलों को नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए प्रकोपित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। गोलमिज, इस कीट के लार्वा बौर के डंठल, पत्तियां, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर हानि पहुँचाते हैं। इसके प्रभाव से फूल एवं फल नहीं लगते हैं और फल गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए तथा फॉस्मेडन 0.05% का छिड़काव और घटने की स्थिति में करना चाहिए। फल छेदक कीट, इस कीट के लार्वा जब फल मटर के आकार के होते हैं तब से ये परिपक्वता तक फल में घुसकर फल के गूदे तथा बाद में उसके बीज को खाकर नुकसान पहुँचाते हैं। इससे फल शुरुआती अवस्था में गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए गिरे हुए प्रकोपित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर नीम ऑयल 3 मिलीलीटर पर प्रति लीटर या पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए या क्लोरात्री नीली प्रोले 18.5 EC 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के साथ घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आम का मधुआ कीट, ये कीट आम की नई पत्तियों, टहनियों और पुष्प गुच्छों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट के निम्फ पत्तियों से रस चूसते हैं। इसके पुष्प मुरझाकर झड़ जाते हैं। आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी रहता है। विटामिन सी शरीर का सर्व रक्षक है। पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है। इसके अलावा कोशिका तत्व और वसा से जुड़े अन्य विटामिन जैसे विटामिन ए और ई विशेष रूप से ऑक्सीजन मुक्त कणों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी पर निर्भर है। शरीर में विटामिन सी का मुख्य उद्देश्य सैक्रो एंजाइम के लिए आयरन को संरक्षित करना है। ये चयापचन में उनकी भूमिकाओं के लिए इस आवश्यक खनिज पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि विटामिन सी कम मात्रा में शरीर की कोशिकाओं में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। यह प्रोटीन, डीएनए, वसा, कार्बोहाइड्रेट की रक्षा करते हैं। विटामिन सी से भरपूर फलों में संतरा, कीवी, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी, गूजबेरी, सिबेरीज, अमरूद और आम जैसे रंग से भरपूर सुपल पर फल शामिल है। विटामिन सी एक प्रतिरोग एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। बुजुर्ग लोगों में अंधापन, हृदय रोग जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप, कैंसर, पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोग तंत्रिका संबंधित विकारों में विटामिन सी काफी लाभदायक है।
1: आदित्य कुमार, आम के देखभाल पर इतने नीक गपशप केलौं, एहि के लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई लोकनि, एखन हम सब बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित एकटा भेंट वार्ता सुन रहल छलौं। भेंट वार्ताकार छला आदित्य कुमार ठाकुर, इनका संग गप कर रहल छला शांतनु कुमार मिश्र। दुनू गोटे के बीच जे गप भेल ओहिसँ नीक जानकारी भेटल। दुनू गोटे के धन्यवाद। आब बेर भऽ चलल अछि सतो भाई जे मौसम संबंधी सूचना के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित पूसा समस्तीपुर मौसम विज्ञान केंद्र से जे मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्राप्त भेले ओ की अछि से किसान भाई लोकन के कह दियो।
3: 20 से 24 मई 2024 धरि के मौसम पूर्वानुमान एहि प्रकारे रहबाक अनुमान अछि। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान उत्तरी बिहार के अनेक जिला में गरज वाला बादल बनबा के संभावना अछि। कतेको स्थान पर हल्लुक बरखा भ सकैत अछि। बरखा के समय तेज हवा चल सकैत अछि। एकर संभावना 20 से 22 मई के आसपास ज्यादा रह सकैत अछि। एहि अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबा के अनुमान अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकैत अछि। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 25 से 30% रहबा के अनुमान अछि। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चलबा के संभावना।
2: देखियो, एकर अतिरिक्त किसान भाई लोकन के समसामयिक सुझाव

0: से हो कहल गेल अछि। ओना तऽ आइ दोपहर में पानि भेलै, बरखा जाहि क्षेत्र मे नहि भेल अछि, बरखा नहि भेलाक स्थिति मे किसान भाई लोकनि आम, लीची, प्याज, गर्मी मास वाला तरकारी फसल मे समय समय पर पटौनी कऽ जाहिसँ खेत मे नमी बनल रहे। प्याज, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ, लौकी, मूंग के फसल मे निकाई गुराई वाला काज करित रहबाक चाही।
1: संगे उड़ीद के जे फसल अछि ओ हम निकाई गुराई करबाक चाही।
0: तो आब हम सब गीत नादक आनंद ली, सुनी इस सुंदर सन गीत
1: सुनल।

0: बहुत सुंदर आगे तक कलाकार छली विदुषी शारदा सिन्हा। देखियो समय अपन अबाधिगत स्वचलित रहे थे, खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय से हो लग जा रहा है, तो किसान भाई लोकन से चलवाक आज्ञा मिल जाए। नमस्कार सत्तो भाई।
1: नमस्कार अनिल भाई।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: AIR at 90.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के

0: किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। श्री चौधरी ने पटना में पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि का चेक सौंपने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा कि आप ड्यूटी कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी।
1: बिहार में सुशासन और आपके बल पर सुशासन, बिहार की समृद्धि का भी रास्ता आप ही है, क्योंकि आप सुशासन देंगे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाए, और जब व्यवस्था खड़ी होगी तो उद्योग धंधे लगने लगे। सभी पुलिस वाले को कहा है कि आंख मूंद कर सुशासन स्थापित करने में सहयोग, और आपके परिवार आपके लोगों की चिंता सरकार करेगी।
0: श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज श्रावणी मेला और बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई विभागों के मंत्री मौजूद थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विपक्ष के एक खास जाति को टारगेट बनाने के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जाति नहीं देखी जाती है।
2: प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़

0: शहर में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है।
1: मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को नए कुलपति के स्थायी नियुक्ति होने तक कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी ने आज कार्यवाहक कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। लोक भवन ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपति की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE4 शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है।
2: TRE4 के मामले में हम लगातार इस बात को रखते हैं। अब बिहार की जनता तरस रही, उमड़ निकला जा रहा है। तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ, लोग इतने मेहनत किए और परीक्षा नहीं होता, इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती। इतने लोग पीड़ित हैं, सरकार वादा करके अगर मुखर जाती है, नहीं कर पाती, तो ये सरकार की फेलियर। परीक्षा
1: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई EOU का विशेष सेल गठित किया गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह सेल विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही अवैध वसूली की शिकायत, राजस्व कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को देखते हुए सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति कर दी है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार मठ मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
1: देखिए, राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग राजस्व विभाग एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के सभी सदस्य

0: उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो, चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या तो अतिक्रमण के है या फिर आपसी विवाद में फंसा हुआ है। इसी के लिए राजस्व विभाग ये पहल करने जा रही है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी जमीन सुरक्षित रहें।
1: काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग भागों में 3 लोगों की मौत की खबर है। मधेपुरा के बिहारीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गया और नवादा जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, भोजपुर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है।
2: राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: बेगूसराय जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: शेखपुरा की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी 6 भाइयों को शस्त्र अधिनियम के तहत 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के चकबंदी रोड में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शुरू हो गया है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत गंगटा पंचायत के सोनरवा गांव में ग्रामीणों ने नल जल योजना बंद होने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सोलर पैनल में

0: गड़बड़ी के कारण समस्या हुई है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। सुपौल जिले के बीरपुर में शैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंह बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के प्लासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों की पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डगरवा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आमजनों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि पहले शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है।
2: सहयोग शिविर में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता का जो आवेदन आ रहा है उसको 30 दिनों के अंदर डिस्पोजल करना है। तो पहले सहयोग शिविर में जो आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिस्पोजल की दिशा में अग्रसर है।
1: इधर सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रखंडों एवं पंचायतों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जहां नियमित रूप से अधिकारी भाग लेकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पूर्णिया जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है।

0: गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग न करें। जिला प्रशासन द्वारा जिले के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अपील की गई है। कला और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना तथा वर्षों से कला साधना में समर्पित कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले पारंपरिक शास्त्रीय चाक्षुष और प्रदर्शन कलाओं से जुड़े 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र कलाकारों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग बिहार के माध्यम से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 18 से 25 मई तक जनजातीय बाहुल गांव में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत विभिन्न सेवाओं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान, पीएम उज्ज्वला, पीएम जनधन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं से संबंधित शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। रुपोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक लाधर प्रसाद मंडल ने भवानीपुर अंचल कार्यालय परिसर में 29 अग्निकांड पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि के चेक वितरित किए। ये चेक भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के जाबे पंचायत, शहीदगंज पंचायत, गोदावार, पतकेली पंचायत और बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत के विभिन्न गाँव के कुल 29 पीड़ित परिवारों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। गौरतलब हो कि भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत स्थित बलिया आश्रम टोला में बीते दिनों आधी रात भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में कई परिवारों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। पूर्णिया जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्न प्राशन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों का विधिवत अन्न प्राशन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को संतुलित तथा पोषण युक्त आहार की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिल से। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और अनुपमा कृष्णा स्वामी के आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था एआर रहमान ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का गाना, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के आवाजों में। समीर के लिखे गाने को संगीत दिया था रॉबिन भट्ट ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अनुराधा पौडवाल और के पप्पू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म इतिहास में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था दिलीप सेन और समीर सेन ने। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंक में अपने सभक स्वागत अछि। आइ अपने सभक संग छी हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, हम सब जखन कखनो अपन कार्यक्रम सिंगरहारक संग संवेत भ बैसैत छी तऽ मन में बहुत रास गप सब अबैत अछि। गप अपन साहित्य ओ संस्कृति केर, गप अपन समाज आ सामाजिक परंपरा सभक। हमरा सब लेल ई गौरवक विषय रहल अछि जे हमरा लोकनि मिथिला क्षेत्र में जन्म लेलहुँ अछि। एहिठामक संस्कृति ओ सांस्कृतिक परंपरा सब एहि रूपे व्यवस्थित कयल गेल अछि जे आन ठामक लोक सब लेल ई अनुकरणीय रहल अछि, आ तैं हमर सभक दायित्व सेहो बढ़ि जाइत अछि। कारण अपन ओहि सांस्कृतिक परंपरा सभक संरक्षण संवर्धन केर दायित्व हमरे सभक अछि। ओना तऽ सब गोटे अपन एहि कर्तव्यक निर्वहन करैत रहलहुँ अछि, मुदा एहिमे महिला लोकनिक सहभागिता विशेष रूपसँ रहलनि अछि। कोनो विधि व्यवहार हुए आकि पावनि तिहार, महिला लोकनि सदति आगाँ रहली अछि। तहिना गीत नादक जो हमरा लोकनि गप करी तऽ एहि क्षेत्रमे सेहो महिला लोकनिक योगदान हमरा सबसँ बेसी रहलनि अछि। अपना सब ओहिठाम गीत नादक एकटा सुदीर्घ परम्परा रहल अछि, आ ओकरा संरक्षित करबाक श्रेय सेहो हिनके सबके जाइ छनि। गीत नादक चर्च आगा हम सब आर करब, मुदा औने पहिने ममता ठाकुर के स्वर में ई गीत सुन लै छी।

ममता ठाकुरक गाओल ई भगवती गीत अखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, लोकवृत्तक सर्वाधिक प्रशस्त ओ समृद्ध विधा अछि लोकगीत। लोकगीत सबमे हमरा लोकनि मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक सुस्पष्ट ओ सजीव चित्र देखि सकैत छी। पहिने चर्च केलहुँ जे लोकगीत सब मिथिलाक सामाजिक ओ सांस्कृतिक जीवनक अभिन्न अंग बनि एकर लोक सांस्कृतिक संचालनमे प्रमुख भूमिकाक निर्वहन करैत रहल अछि। लोकगीत सभक जतेक प्रभेद अछि, प्रायः सभ प्रभेद मैथिली लोकगीतमे देखना जाइत अछि। सभक अपन अपन महत्व अछि आ

0: रास, ग्वालरी, विरहा, समर आदि प्रभृतक गीत सब अधव काल सँ अपना सब ओहिठाम गाओल जाइत रहल अछि। बंधु लोकनि, जखन मैथिली गीत सभक एतेक रास चर्च हमरा लोकनि कऽ रहल छी, तऽ आउ ने एक गोट पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम सुनैत छी। मिथिला मे मास गीत, संकलन आ वाचन छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक केर।
1: नमस्कार, आई मिथिला मे मास गीत।

संगीत तो मिथिला के रोम रोम में रचल बसल आ पचल अच्छी से तेना जना मिथिला के धमनी में रक्त संचार होए जना मिथिला के हृदयक धुक धुकी होए जना मिथिला के सांसक आरोह अवरोह होए मिथिलावासी के जन्म होते सोहर खिलौना सा सांगीतिक स्वागत होई छनि आ अंतिम यात्रा के बादो सांगीतिक विदाई देल जाइत अछि। मृत्यु के बाद श्मशान भूमि में गीतक संग विदा करबाक परंपरा अखनो मिथिला के कतिपय क्षेत्र में जीवित अछि। एहना स्थिति में जन्म सँ मृत्यु धरि कर जीवन गीत विहीन कोना रहि सकैत अछि से नहिए रहैत अछि। एहि ठामक संपूर्ण जीवन मैथिलीक पारंपरिक गीत सँ सरस सुवासित अछि। जतेक संस्कार आ ओहि संस्कार में जतेक विधि विधान से सब तो गीतक लय भास सँ समन्वित रहिते अछि। जीवनक वैयक्तिक सुख दुख केर अनुभूति सेहो मधुमय स्वर सँ सिक्त होइत रहल अछि। एहने गीत थिक मास गीत जाहि में आत्मानुभूति मुखर होइत रहल अछि। इहो थिक ऋतु गीते जाहि में बरख भरिकर बारहो मास अपन छवि छटा आ गुण गरिमा के संग विद्यमान रहित अछि। मुदा एकर मूल उद्देश्य ऋतु के प्रभुता देखायब नहि होइत अछि अपितु ओहि ऋतु के प्रभाव सँ उत्पन्न ककरो हृदय के स्पंदन के मुखर करब होइत अछि। एहि गीत के ओहि में उपस्थित मासक संख्या के आधार पर संबोधित कयल जाइत अछि। जँ बारहो मासक उल्लेख रहल आ ओहि मास सभ में गौनिहारक मनोभाव रहल तो ओकरा बारहमासा किंवा बारहमासा कहल जाइत अछि। तहिना छओ मासक वर्णन रहने छओमासा आ चारि मासक वर्णन रहने चौमासा भेल। एहि मास गीत सभ में विरहावस्था प्रियतम सँ वियोगक कारणे उत्पन्न परिस्थिति सँ उपजल छटपटाहटि व्याकुलता मिलन कर उत्कंठा अभिलाषा आ उत्कट स्नेह रहैत अछि। जन्म मास अखाढ़ सुंदर श्याम गेला मोहि तेज यो कौन विधि हम मास खेपब हेरत अब दुख कौन यो सावन हे सखी सर्व सुहावन खनक चंपा गाछ यो छल मनोरथ झुलब हिड़ला चरिपिया के साथ यो भादव हे सखी घोर बरखा दोसर राति अन्हार यो गुजत दादुर शब्द चहु देशी मोहि किछु नहीं भाव यो आसिन हे सखी आश लगायल आशो ने पुरल हमार यो राधा कृष्ण मुरारी भजुमन पुरत सब अभिलाष यो। एहि विविध चौमासा केर पाँती सब सन भाव छौमासा में सेहो रहित अछि। एहि में आखाढ़ सावन भादो आ आसिन मासक बाद केर दू मास कार्तिक आ अगहन केर मनोदशा युक्त रहित अछि। ई कखनो कहैत अछि कार्तिक हे सखी पर्व लगै छै सब सखी गंगा स्नान यो सब सखी पहिरे पियर पितंबर हमरो दुख देल यो अगहन हे सखी सारी लिवि गेल सब रंग लगै शीश यो। तो कखनो ई कहैत अछि कार्तिक हे सखी कंत न्यायल न्यायल नंदक लाल यो हरिबिन जे किछु ने भावै सुफल सेज उदास यो अगहन हे सखी सारी लुबुधल लवल सब रंग धान यो चिड़ई चोचा सुख ही खेपल हमधन विरह बताय।

चौमासा छ मासे जका बारह मासा में सेहो प्रियतम केर अनुपस्थिति कारणे विरह दग्ध नायिका केर मनोभाव रहित अछि। एहि में बारहो मास आ ओहि मास में विरहिणी केर अवस्थाक चित्र भेटैत अछि। चैत में बेली फुला गेल आ मोहन अर्थात प्रियतम हमरा तेज क माने त्यागी क चल गेला। जो कंत संग रहित अछि तब बैसाख में घाम सँ भीजल शरीर पर चंदनक लेप लगा शीतलता केर अनुभव करता हूँ। जेठ हेठ भेल कहुना बीतल आब बरखा आबि तुलायल। एहना में प्रियतम नहीं छथि तो हम माहुर घोरी कऽ पीबि लेब आ यमराज के गरा लगाएब। आखार में तो हमर आँखिये सरोवर भ जायत जाहि में सँ युगल धार प्रवाहित होयत। परदेसी प्रियतम केर प्रतीक्षा करैत सावनक रिमझिम बून भादो केर अन्हरिया राति में चमकैत बिजुरी ठनकैत ठनका आसिनक अपूर्ण आस कार्तिक केर एकाकीपन अघन केर सुहावन समय सुई जकां शरीर के पूसत छेदैत जाड़ माघक थरथड़ी आ फागुनक रंग रभस सँ वंचित रहबाक मनोव्यथा बरह मासा केर गीत सब में अबैत अछि। कोनो मास गीत होए चौमासा हो आकि छौमासा बरहमासा प्रायः सभ केर परिणति माने अंत सुखानुभूति केर आशा केर संग होइत अछि। मास गीत विरहिणी केर दैन्यक वर्णन तो करैत अछि मुदा नायिका केर अनुभूति केर घाव पर मरहम सेहो लगबैत अछि। विषम परिस्थिति सँ उबरबाक विश्वासो भरैत अछि। एहि गीत सब में पतिक घर नहि अयबासँ दुखी प्रियतमा कखनो हुनका अज्ञानी माने अवसर विशेष के नहि चिन्हनिहार कही छथि तो कखनो एकाकीपन लेल अपन अपराध कर जिज्ञासा करी छथि। तथापि पति के दोषी नहि मानै छथि। पतिक नहि आबि सकबा लेल कुबजी सौतिनिया के दोख दै छथि। ई गीत सब प्रायः आखार मास सँ आरंभ होइत अछि आ क्रमानुसार सब मासक वर्णन करैत चलि जाइत अछि। आखार सँ एहि दुआरे जे ई मास श्रृंगार भाव केर उद्दीपक होइत अछि। ओना एहनो गीत सब अछि जे अपन यात्रा बरख भरिक कोनो मास सँ आरंभ कऽ लैत अछि। ओना तऽ मास गीतक इएह तीनटा प्रकार उपलब्ध अछि चौमासा छौमासा आ बरहमासा मुदा तीनमासा आ पचमासा सेहो भेटैत अछि। डॉक्टर अणिमा सिंह अपन मैथिली लोकगीत नामक पोथी में एक एकटा तीनमासा आ पचमासा सेहो संकलित कयने छथि। कार्तिक पित्त प्रकोप सबके कतय ठहार हैत।

0: रामायण आ कृष्ण जन्म सँ संबंधित भाव सेहो आयल अछि। एहि प्रकारक गीत में देखब जे प्रायः गीत में कृष्ण छथि अपन प्रियतम केर उपस्थिति के नायिका कृष्ण केर माध्यमे व्यक्त करै छथि। से प्रायः एहि दुआरे जे श्री कृष्ण लीला पुरुष थिका। ओना मास गीत में सीताराम सेहो छथि, मुदा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम छथि, सीता मिथिला पुत्री छथि। तैं एहन गीतक स्वर भिन्न भेटैत अछि। एहन गीत में उपालम्ब नहि अपितु अनुनय विनय कर भाव होइत अछि। अगहन सीता के बियाह पूस कोबर तैयार, माघ सीर कब भराय देव रघुवर जी के, फागुन फगुआ खेलायब चैत फूल लोढ़ी लायब, बैसाख बेनिया डोलायब रघुवर जी के, जेठ घाम पड़े भारी अखाढ़ बुंद झरे सारी, सौन झूलबा लगा देव रघुवर जी के, भादव राती अन्हार आसिन करब सिंगार, कार्तिक आबि गेल मिथिला रघुवर जी के। श्रोता बंधु आई एतबे, अगला भेंट धरिक लेल प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार कर संग अमलेंदु शेखर पाठक के देल जाए अनुमति। नमस्कार।
1: मिथिला में मास गीत ई विशेष कार्यक्रम जे पूर्व प्रसारित छल हमरा लोकनि सुनि रहल छलो। आ जखन एते रास गीत सभक चर्च केलो त की विचार, एक गोट गीत सुनल जाए। आउ ने अरविंद कुमार झाक स्वर में ई गीत सुनै छी, फेर हमरा लोकनि शब्द विमर्श दिस सेहो चल।

आ आब शब्द विमर्श। आइ जे हमरा लोकन शब्द सब लऽ कऽ आयल छी ओ एही गीत सबसँ सम्बद्ध अछि। एकटा शब्द अबैत अछि पसाहब। सौन्दर्यवर्धक वस्तुसँ देह सजायब समारब लेल पसाहब शब्दके प्रयोग होइत अछि। आ पसाहनि पसाहनि भेल पसाहबा काल गाओल जायवला गीत। नहछु नहछु भेल नवजात शिशुक पहिल बेर नह कटबाक विधि। परिछन गीतसँ तऽ सब केओ परिचित छी। परिछन माने नीक जकाँ देखब, उपयुक्तताक जाँच करब। बरक परिछन काल ई गीत गायल जाइत अछि। आ समदौन समदौन भेल बेटीकेँ सासुर विदा करबा काल गाओल जायवला गीत, जाहिमे सामयिक उपदेश सेहो रहैत अछि। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। बंधु लोकनि, कार्यक्रमसँ हमरा लोकनि विदा ली। ओहिसँ पहिने अपने सबसँ एक गोट आग्रह। आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने सबकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक सुझाव निश्चित रूपसँ अपने लोकनि हमरा सब धरि पठबैत रही। जँ अपने लोकनि पत्र द्वारा अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पठबऽ चाहैत छी, एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केन्द्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपने लोकनि अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पठा सकैत छी। तऽ एहि आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ आओत, अगिला भेंट धरिक लेल हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबा

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
5: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक

0: द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि
2: मंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच
1: अदर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है,
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।

0: द मिनिस्ट्री ऑफ
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग

0: विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज़ बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोज़ाना तकरीबन 46 से 47 हज़ार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा

0: रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज़्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफ़र किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफ़र के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमलावरी और तहफ़ को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफ़र पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़िरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज़ नए भारत के बढ़ते हुए वक़ार की एक अलामत है।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर वख़ोश किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफ़ैन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज़्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहाँ की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क़्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद से तमाम शक्लों खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत

0: पर फिर कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। अनिल पांडे के लिखे इस गाने को संगीत दिया था संदेश शांडिल्य ने।

चल मेरे भाई। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अदाई। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, कातिल सैफई के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रमिला देवी, पूनम कुमारी, कल्याणी सिन्हा सहेली, शारदा सिन्हा बोध नारायण सिंह और अरविंद कुमार झा को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

वो कौन थी। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। रजा मेहदी अली खान के लिखे इस गाने को संगीत दिया था मदन मोहन ने।

ताजमहल फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रोशन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

नक्श लयालपुरी के लिखे इस गाने को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जिसे हमने लिया था फिल्म दिले नादान से। संगीत खयाम का था।

फिल्म साहेब बेबी और गुलाम का यह गाना अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

प्यार किए जा। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गीत फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने की लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।